अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: खूबसूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। यह है बिंदास मॉर्निंग्स और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव,
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: जी हाँ, स्टेशन क्लॉक में 6:08 हो रहे हैं। हम दोनों यहाँ पे पहुंच चुके हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कूदते हुए, भागते हुए, कैसे ना कैसे यहाँ पे आ चुके हैं आपके साथ वक्त बिताने के लिए, बातें करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए। मगर ये सिलसिला शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है।
1: क्या
0: क्या है वो रिक्वेस्ट बताइए कशिश मैम।
1: क्या है वो रिक्वेस्ट?
0: वो रिक्वेस्ट यही है कि मैसेजेस कर दीजिए 3311 1063 पर।
1: अब रिक्वेस्ट कहाँ, अब तो आपको पता है, अब तो आदत बन जानी चाहिए आपकी कि आपको अब जैसी हमारी आवाज सुनाई दे वैसे ही अब आपको अपना फोन उठाना है 3311 1063 पर, अपनी गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस हमें जो है भेजने हैं, मोटिवेशन भेजना है, आज का इंटेंशन भेजना है बिना किसी टेंशन के।
0: अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में।
1: आज आप गाना जो है वो बताइए, हम गवाते हैं।
0: बिल्कुल आप बताइए, मैं डिसाइड करता हूँ फिर। अभी फिलहाल यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातें जो है हम करने वाले हैं, उसके साथ साथ गाने भी आपके लिए बहुत प्यारे हम लेकर आए हैं। कोई टेंशन नहीं, ईद की छुट्टियां आ रही है, फिर से मिलके आ जाना, क्या जा रहा है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई वर्क वीक हो तो ऐसा, मतलब सोचिए ट्यूसडे से छुट्टी शुरू आप लोगों की, हमारी नहीं।
1: देखो सैटरडे तक जो है वो वीकेंड ऐसे जैसे चलता है,
0: ये वीक नहीं है, ये वीकेंड है। ठीक है, ये वीक नहीं है, हफ्ता थोड़ी ना है, ये थोड़ा हो सकता है। बट ऐसा कैसे हो रहा है
1: ये?
0: ईद की हॉलीडेज जो है कल डिक्लेयर हो चुकी थी, स्टोरी भी सिमरन ने डाल दी थी, आपने देख लिया होगा, नहीं तो सुन लिया होगा, कहीं ना कहीं खबर आपको मिल चुकी होगी। तो देखो मेरा तो यही मशवरा है कि ऐसा होना चाहिए वर्क वीक, 3 डे वर्क वीक,
1: इतना खुश हुआ तो पर नजर ना लग जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गाने सुनते हैं।
0: नहीं आपके लिए, आपके लिए, हमारे लिए तो है वर्किंग अभी भी।
1: हाँ, हमारे लिए तो वर्किंग है, देखो हम तो आएंगे आपसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात बोलते हुए अभी जरा किक स्टार्ट करते हैं बिंदास मॉर्निंग को चांद मेरा दिल मूवी का गाना सुनते हुए, राघव चैतन्य और जनता गांधी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: सी यू बिंदास।

0: Angina.
1: Radio Olive.
2: 106.3 Radio Olive.
3: Gio Bindas.
4: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
5: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
4: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 reals growth पर पाइए एक coupon.
5: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible हैं.
4: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra coupon or mega draw ticket.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: मैं हूं अनिल कपूर, वीडियो

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: केके और शिल्पा राव की आवाज में बचना है हसीनो मूवी का गाना हमने सुना, काफी प्यारा गाना है। इस गाने के पीछे एक छोटी कहानी है। सोनू निगम ने बोला है कि एक गाना जो मुझे बहुत मन था कि अगर वो मैं गाता या फिर मुझे गाने का बहुत मन था, वो था खुदा जाने। उसके बाद उन्होंने बोला कि मगर केके ने इतना खूबसूरत गाया कि फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ये जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। बट यार इस गाने के पीछे की छोटी सी कहानी है। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे भाई हमारे पास आए हैं थोड़े मैसेजेस, तो जरा धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। सोना जी का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग सुदेव भाई एंड कशिश। गुड मॉर्निंग सोना जी,
1: गुड मॉर्निंग।
0: उम्मीद करते हैं कि आपका दिन जो है काफी बढ़िया और बिंदास जाए। उसके साथ और मैसेज आया जुल्फी भाई का, लिखा है द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इज टू मेक एवरीबॉडी हैप्पी, द सिंपलेस्ट टास्क is to be happy with everyone. Good morning करके बिल्कुल सही बात कर दिया।
1: बड़ी बड़ी बातें कितने आसानी से कर देते हैं
0: भाई। यही तो है बढ़िया बात। और गुड मॉर्निंग, मे यू हैव अ वंडरफुल हेल्थी एंड प्रेशियस डे करके मैसेज किया है शशिकांत पाटिल जी ने। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। नाजनी जी का मैसेज आया है, फिल योर माइंड विद सीड्स ऑफ ग्रेटनेस, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु वॉन्ट टू सी यू प्रॉस्पर, एक्ट लाइक यू आर अ विनर एंड आर विनिंग योर वे टू विक्ट्री। That is the way to start your morning to find success. Good morning करके, thank you so much.
1: ये हुई ना good morning, अब हुई ना motivation.
0: अब सिर्फ good morning नहीं हुई, ये बहुत बढ़िया level की morning
1: अब हो गई बिंदास morning।
0: अरे वाह क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। उसके साथ साथ मेहरुनिसा जी का भी मैसेज आया है, लिखा है awesome morning सुदेव एंड कशी करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।
1: आप मम्मी का मैसेज आते हैं, शर्मा क्यों जाते हो?
0: नहीं ये शर्माते नहीं है,
1: खुश हो जाते हैं, एक्स्ट्रा खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों सुदेव
0: वो हो जाता है। मम्मियों का प्यार देख के हमें अच्छा ही लगता है ना,
1: ऐसे चैट पे जो है वो प्यार मिलता है। उसके बाद फिर जब मेरे को वीडियो कॉल आता है मॉम से, तब भी बोलती है कि अरे हम सुदेव को सुना हमने, बहुत अच्छा लगा, मेरा भी तो शो है
0: ये। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यही प्यार है, इसी प्यार के सामने तो हम हार जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी देर में हम गानों के उस पार जब आएंगे तो एक सवाल लेकर आएंगे। सवाल के लिए तैयार हो जाइए, चेक करेंगे हम कि आप पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और कशिश से कितने तेज हैं।
1: देखते
0: हैं अभी फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी अविंदास
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या पर ये बात है,

0: यार मेरे मन में ना एक बहुत ही बड़ा एक पीजे आया.
1: अच्छा पीजे आया है, पहले ही डिस्क्लेमर दे रहे हैं आप.
0: दे दिया.
1: ठीक है बताइए.
0: इफ यू कांट फ्लाई हायर
1: या
0: तो फिर कतर एयरवेज यहाँ पे क्यों है, पकड़ो कतर एयरवेज का फ्लाइट और जाओ ऊपर.
1: आपने आपको जब रियलाइज हो गया था कि गंदा जोक है तो फिर आपने क्यों हिम्मत करी है बोलने की?
0: देखिए
1: क्यों अच्छा चल रहा था, मस्त कुंदाल गांजा वाला का बढ़िया गाना एंजॉय कर रहे थे, वाइब में थे. मैं अभी कहने वाली थी कि ये गाना इतना पहले आया है कि मैं पैदा नहीं हुई थी एंड फिर भी ये गाना कितना पसंद है. क्यों
0: मन किया?
1: हर फ्रेंड्स ग्रुप में, हर ऑफिस में एक ना एक ऐसा इंसान होता है जिसे पता है कि उसके जोक बहुत गंदे.
0: देखिए मैं यही बोलना चाहूंगा, मन कोई गांडीव थोड़ी ना है कि जहां सादा सद गया.
1: क्या?
0: ये और भी बहुत पुरानी बात है, आप समझ नहीं पाओगे. जिन्होंने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ा है उन्हें पता है शायद.
1: आपने पढ़ा है?
0: बिल्कुल पढ़ा है मैंने. मैं हिस्ट्री
1: ये हिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एक आध चीज पढ़ते हैं और फिर उसको लेकर आते हैं और फिर उसी से सवाल पूछते हैं.
0: मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बोल नहीं सकता, हिस्ट्री मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा अच्छे से, मुझे एक्चुअली पसंद.
1: और इंजीनियरिंग की है सभी ने और बोल रहे हैं
0: पसंद मुझे हिस्ट्री था पढ़ना, मगर मुझे साइंस लेना पड़ा क्योंकि जिस टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ाई करता था उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में ह्यूमैनिटीज नहीं दी और मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि सेकेंड शिफ्ट में तो जाएगा नहीं और स्कूल चेंज होगा नहीं. तो मैंने बोला ठीक है तो फिर क्या कर सकते हैं. उन्होंने एक ही ऑप्शन, मतलब क्या, साइंस. और मुझे कॉमर्स में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वाणिज्य में हमें उतना तालपरी कभी था ही नहीं.
1: वाणिज्य में तालपरी? व्हाट?
0: हाँ
1: रहने दीजिए, आप क्वेश्चन पूछिए, आज का सवाल पूछिए ब्लैक बोर्ड स्टोरी का प्लीज.
0: चलिए ब्लैक बोर्ड स्टोरी शुरू करते हैं.
2: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज.
0: जी यहाँ पे जो है एक बहुत ही प्यारा सवाल लेकर हम आए हैं और आज का सवाल काफी स्पेशल है. स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज है वर्ल्ड फुटबॉल डे और फुटबॉल डे को सेलिब्रेट करने के लिए फुटबॉल रिलेटेड एक सवाल हमारे पास है. सवाल ये है कि फीफा ने गोल्डन गोल का कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको बताना है. फीफा ने गोल्डन गोल का कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया था, ये आप सही जवाब दे दीजिए. देखते हैं कि आप पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, इन सबसे कितने तेज हैं.
1: और कशिश से भी, क्योंकि कशिश को तो नहीं आता इसका आंसर.
0: और इसको मैं एक और चीज बता देता हूँ कि 2004 में फीफा ने इसको अबॉलिश भी कर दिया था, यानी ये रोक भी दिया था. बट ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था ये आपको बताना है, किस साल इंट्रोड्यूस हुआ था ये आपको बताना है.
1: 2004 में.
0: हाँ, इन्होंने
1: अबॉलिश कर दिया था.
0: 2003 में पैदा हुए थे ना. हाँ. इसलिए जैसे ही कशिश पैदा हुई फीफा ने सोचा कि अब नहीं भाई,
1: अब गोल्डन गोल की कैसे बात है, गोल्डन गर्ल हमारे
0: गोल्डन
1: पास
0: गोल,
1: है
0: गर्ल तो आ चुकी है हमारे पास. अब झूठ नहीं बोल सकता गाइस मैं. चलिए हम गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में, जल्ला वल्ला.
1: आए है यार ये गाना सुन के मेरा डांस निकल ही आता देखो.
0: ठीक है गाइस आप लोग सुनिए, एंजॉय करिए, मैं आंख बंद करके बैठ जाता हूँ. स्टे ट्यून्ड
1: जियो बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश.
0: और यहां पे जो है हम हमारे सवाल का जवाब लेकर आए हैं. यहां पे हमारे पास भी थोड़े जवाब आए हैं. अनिल जी का मैसेज आया है, उन्होंने बोला है 1993. उसके साथ साथ राजीव जी का मैसेज आया है, उन्होंने बोला है 1993. जुल्फिकर भाई का मैसेज आया है, उन्होंने बोला 1993. उसके साथ साथ रश्मिका जी का मैसेज आया है, उन्होंने बोला 1993.
1: मंदाना
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करेंगी ना, वो मुझे क्यों मैसेज करेंगी, अभी तो है विजय वहां पे तो. हाँ
1: जैसे विजय नहीं होगा तो ये कोई मैसेज करने वाला
0: नहीं, तब भी नहीं करेंगी, क्यों करेंगी. मैंने बोल दिया कि मुझे मत किया करो. मैं
1: सख्त लौंडा
0: सख्त, बिल्कुल हम जाकिर भाई के भक्त हैं, हमने भी सलमान भाई पे छोड़ रखा है. और संधू जी का मैसेज अभी अभी आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग जी, हरपाल संधू फ्रॉम दुकान. संधू जी गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आपका दिन जो है काफी बढ़िया जाए. और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो जो हमारे पास जवाब आए हैं वो सही है या गलत. देखिए, गोल्डन गोल का कॉन्सेप्ट है वो आया था 1993 में, जब फीफा और इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड ने एक सडन डेथ रूल जो है एक्स्ट्रा टाइम के लिए लेकर आए थे. और इसका नाम जो है पहले सडन डेथ था, बट थोड़ा एक पॉजिटिव इमेज देने के लिए, अपील देने के लिए इन्होंने इसे गोल्डन गोल का नाम दिया. और March 13, 1993 में ऑस्ट्रेलियन मिडफील्डर एंथनी कार्बोन ने उरुग्वे के अगेंस्ट एक क्वार्टर फाइनल मैच में जो है पहला गोल्डन गोल स्कोर किया था. और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 2004 में इस रूल को जो है अबॉलिश कर दिया गया था, रोक दिया गया था. उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम है हम वो देख रहे हैं, उसी तरीके से चला आया था. और एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, गोल्डन गोल के साथ हमारे साथ यहाँ पे गोल्डन गर्ल बैठी है.
1: इतनी भी तारीफ मत किया करो यार.
0: और गोल्डन गर्ल की एक बहुत ही खूबसूरत बात हम सुनना चाहेंगे. गोल्डन गर्ल प्लीज.
1: So, देखिए आप जो है इस सीजन में थोड़ा सा स्मार्टली शाइन कर सकते हैं मलाबार गोल्डन डायमंड के साथ. आपके पास मौका है जो है शाइन करने का. आप जो है अपनी ओल्ड ज्वेलरी जो है, जो आपने कहीं से भी परचेज किया है, उसे मलाबार गोल्डन डायमंड ले जा सकते हैं. एंड बहुत ही अच्छे प्राइस पे उसका प्राइस ले सकते हैं यार, क्योंकि देखिए अभी जो रेट्स हैं इंडिया में वो काफी कम हुए हैं. एंड उसका एक बहुत ही मेजर असर कतर की गोल्ड शॉपिंग पे जो है आपको पड़ता हुआ दिखने वाला है. कितना परसेंट फर्क पड़ा है?
0: 15% आप सेव कर सकते हैं गोल्ड प्राइसेस में यहाँ पे कतर में. तो मैं यही बोलूंगा कि भाई इंतजार किस बात का है, सीधा अपने नजदीकी मलबार गोल्डन डायमंड शोरूम को विजिट कीजिए, इस ऑफर का लाभ उठाइए, लुत्फ उठाइए, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए
1: जियो बिंदास.
2: रेडियो ओलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना.

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई स्टेशन क्लॉक में 7:05 हो रहे हैं. तो चलिए जरा मौसम का हाल देख लेते हैं क्या हो रहा है. अभी दौड़ते हुए भागते हुए बादल की तरह रफ्तार से फुर्ती से
1: यहाँ पे कशिश्वा
0: मैडम पहुंच चुकी है. सांस ले लो मैडम, पहले सांस. सांस में तेरी सांस पूरी नहीं हुई है मुझे लगता है, अभी बैठ जाओ आराम से.
1: और मैं बाहर आपको बताऊं, इतना अच्छा मौसम हो रहा है.
0: अच्छा,
1: मतलब धूप है, बहुत कड़कती हुई धूप है, लेकिन हल्की हल्की हवा भी चल रही है. अच्छा लगा मेरे को बाहर जाके.

0: मैं बता देता हूँ अभी टेम्परेचर जो है वो है 34 डिग्री सेल्सियस का, और आज का हाईएस्ट जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट जाएगा 29 डिग्री सेल्सियस, और हवा बह रही है 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। और मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा हमारे होश तो नहीं उड़ाएगी?
1: हमारे होश तो ऑलरेडी उड़े हुए हैं, और कितना उड़ा के ले जाएगी।
0: वैसे इस हफ्ते की छुट्टी देके हम सब के होश उड़े हुए हैं।
1: किसी की नजर ना लगे, नो नजर प्लीज गाइज। हम ये छुट्टी बहुत मन से चाहते हैं। वैसे देखिए हमारी ऐसी छुट्टी है नहीं।
0: हमें थोड़ी सी
1: ऐसे लीनियंसी मिल जाएगी, आप लोगों से बातचीत करने के बाद हम जा सकते हैं थोड़ा एंजॉय करने के लिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: देखिए आना तो पड़ेगा, पर हमारे लिए उतना ही काफी। हम देखिए ज्यादा ग्रीडी लोग हैं नहीं,
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा प्यार दें और हम जो है मान जाते हैं। वैसे जैसे आप
0: थोड़ा सा प्यार,
1: थोड़ी बिरयानी, थोड़ी बाहर की अच्छी फोटोज, एकदम वॉलपेपर वर्दी फोटोज आप भेज देंगे, मेरे लिए तो उतना काफी है।
0: बिल्कुल,
1: मैं खुश हो जाऊंगी।
0: तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले आप बाहर के फोटोज खींचिए, नजारे दिखाइए, हमें भेज दीजिए 3311063 पर। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ईद के इस सेलिब्रेशन के मौके पे हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद मजलिस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपके पास मौका है इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने का। आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर जितने ज्यादा लोग करेंगे उनमें से सेलेक्टेड लोगों को मौका मिलेगा हमारे साथ रेडियो ऑलिव की टीम के साथ ईद मजलिस एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का, कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट।
1: यस,
0: ठीक है। तो करना क्या है उसके लिए, आपको एक मैसेज भेजना है, EM स्पेस आपका नाम। आप अपने फैमिली के साथ जो है हमारे साथ जो है ईद स्पेंड कर सकते हैं। मेक श्योर करेगी आपके फैमिली में 4 to 5 लोग हैं।
1: yes.
0: ठीक है, जो 4 to 5 लोग की जो फैमिली है वो हमारे साथ आके ईद स्पेंड कर सकती है, और सेलेक्टेड फैमिलीज जो है हमारे साथ आ सकती हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा उन रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स में से, फैमिलीज में से।
1: yes.
0: कुछ सेलेक्टेड फैमिलीज जो है हमारे साथ आएंगी ईद मजलिस सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैसेज क्या करना है फिर से मैं बता देता हूँ, EM स्पेस आपका नाम आपको भेजना है 3311063 पर। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और अदनान सामी का एक गाना सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और कशिश और मैडम की हाल है?
1: बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा गुस्सा सा आ रहा है।
0: किस बात का?
1: अभी आपने सोशल मीडिया नहीं देखा?
0: मैं
1: क्या हुआ है?
0: हाँ।
1: कि मैं जैसी भोपाल से आई, भोपाल में सेलिब्रिटीज आने शुरू हो गए।
0: अच्छा अच्छा, वो वेट कर रहे थे ना
1: कि एक सेलिब्रिटी यहाँ से जाए तो हम दूसरों को बुलाए। तो हमारे भोपाल में जो है एक नई मूवी है, उसका लॉन्च म्यूजिक लॉन्च है वो चल रहा था, जिसमें रामचरण आए हुए थे, एआर रहमान आए हुए हैं एंड जानवी कपूर आई हुई थी, मोहित चौहान आए हुए थे। सो ये म्यूजिक लॉन्च के लिए वहां पहुंचे एंड रामचरण ने दो बहुत बड़ी गलती कर दी। सबसे पहला तो उन्होंने एआर रहमान साहब को बोल दिया कि बिहार की जनता के लिए एक अच्छा सा गाना गा दीजिए। भोपाली इतने ऑफेंड हो गए हैं। वैसे कोई गलत बात नहीं कही उन्होंने, क्योंकि भोपाल में मेजरली जितना भी क्राउड है, स्पेशली यंगस्टर्स की बात करें, कॉलेज की बात करें, जो लोग पढ़ रहे हैं वो बिहार का क्राउड है।
0: अच्छा,
1: तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये हमने जाने दिया।
0: तो वो जियो मतलब ज्योग्राफिकल तरीके से बोल देते,
1: ठीक है। लेकिन एक और उनकी जनरल नॉलेज की मैं वो करना चाहूंगी, उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि बोहरा जी के बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कह रहा है, ओ माय गॉड बुमराह सर, आई एम योर बिगेस्ट फैन, मैं फुटबॉल इतना देखता हूँ, आप इतना अच्छा खेल रहे हैं, हमारे इंडिया का नाम इतना रोशन कर रहे हैं।
0: ओके,
1: एंड आई वाज लाइक ब्रो, थोड़ी स्टडी तो।
0: मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। आई हैव मेट हिम, मैंने उनका इंटरव्यू किया है छोटा सा, ठीक है।
1: सटल फ्लेक्स गाइस, अभी मेरे को फोटो दिखा रहे थे, ठीक है, फोटो देखी हमने कि इंसान कितना हैंडसम लग रहा था कि मैं रामचरण को देख ही नहीं रही थी।
0: बट या तो वहां पे इंटरव्यू होने शुरू होने से पहले ही मैंने ऐसे बोला था कि मैं आपके वॉइस का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन्होंने मुझसे यही बोला कि यू ऑल्सो हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस, तो मैं थैंक यू सो मच। उसके बाद फिर इंटरव्यू सब खत्म हो गया, वो अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ता चला गया, मैं और मैं लॉबी में खड़ा था, ठीक है, लॉबी में खड़ा हुआ था। तो मैं देख रहा हूँ कि रामचरण जो है चल के आ रहे हैं, मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे देखा, वो मुस्कुराए और हेलो सर व्हाट हाउ आर यू करके आके मेरे से हाथ मिलाया। दो मिनट के लिए मेरे सामने सब कुछ जो है एकदम रुक गया। मैं सोचा कि तेलुगु इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्टार, ठीक है, वो आके मुझे सर बोल रहा है, और मैंने मेरे स्टूडेंट्स मुझे इतने प्यार से सर नहीं बोलते जितना उन्होंने बोला। मैं सोचा कि भाई ये क्या हो गया, मैंने बोला सर मैं एक फोटो खिंचा लूं, बोला व्हाई नॉट कम करके। उन्होंने फोटो खिंचवाने के लिए वो खड़े हो गए, मैंने बहुत ही ऑकवर्ड स्माइल के साथ एक फोटो खींची। और उस टाइम पे यार देखो, उस टाइम पे हम उतने अमीर नहीं थे
1: उतने,
0: ठीक है, तो हम रेडमी से फोटो खींच रहे थे, तो उसका तो दिख रहा है। बट या बहुत ही क्या कहते हैं, आई ओपनर मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही हम्बल इंसान है। और उसके साथ साथ मैंने ये भी नोटिस किया कि वो ना थोड़े से शाई है, थोड़े शाई है, थोड़े इंट्रोवर्टेड है, एकदम से ऐसे सबसे घुलते मिलते नहीं है, थोड़ा ऐसे रिजर्व्ड रहते हैं। और मुझे ये लगता है कि मे भी उस टाइम पे जब स्टेज में ऐसी बात हुई ना, वो थोड़े ऑकवर्ड हो गए थे ऑलरेडी, तो उनके हाथ से जो है गेम निकल चुका था, और एकदम से ये भी हो गया तो पूरा कुछ निकल गया। तो यही हुआ, माफ कर दीजिए।
1: यस, और ऊपर से हिंदी में सवाल पूछेंगे आप, तो मुश्किल ही है ना थोड़ा सा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी यही बात बोलते हुए राजी मूवी का गाना सुनते हैं, बहुत ही बढ़िया मूवी, बहुत ही बढ़िया गाना।
1: आय
0: हाय, जिसने राजी नहीं देखी देखिए,
1: देखिए जाके राजी हो जाइए गाइस,
0: बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। और ये गाना भी बहुत प्यारा है, और गाना जब मूवी में आता है वो सीन्स भी बहुत प्यारे हैं, और आलिया भट्ट के तो हम फैन हैं, वो हमारी भी।
1: कुछ भी,
0: स्टे ट्यून्ड, जियो विद अस।

0: favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Taufik Chacha, Eid Mubarak.
3: Aap?
2: Chacha, main, Ibrahim.
3: Har Jumme raat aata hu,
2: tumhari biryani khane ko.
4: Arre miyan, Taufik Chacha ko kuch bhi yaad nahi. Tab aap bhool gaye. Biryani bhi.
5: Ek kaam karte hain, is baar biryani hum banakar khilate hain.
6: Hey, hello, hello. Taufik Chacha ki biryani mein शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ
4: क्यों चचा
7: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ
8: एक मिनट रुको एक बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा, कॉन्टैक्ट 310-999-45।
3: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road
4: and Grand Mall Hypermarket,
5: supported by Ajwa Native Supermarket, Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश.
0: और यहां पे भाई फिट है तो हिट है में एक मिथ के बारे में हम बात करना चाहेंगे और उसको बस्ट करने के लिए एक फैक्ट भी बताना चाहेंगे.
2: फिट है तो हिट है.
0: मिथ है कि डिटॉक्स ड्रिंक्स जो है बॉडी से टॉक्सिन निकाल देते हैं.
1: क्यों हाँ. नहीं निकालते,
0: एक्चुअली नहीं निकालते,
1: नाम ही डिटॉक्स है यार.
0: रिसर्च के अकॉर्डिंग बॉडी का जो नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम ऑलरेडी बहुत एफिशिएंट होता है. लिवर, किडनीज, लंग्स, ये जो है स्किन को, स्किन ये सब कंटिन्यूअसली वेस्ट प्रोडक्ट्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्रोसेस करते हैं और रिमूव करते रहते हैं बिना किसी स्पेशल डिटॉक्स ड्रिंक के. डिटॉक्स जूसेस या क्लेंसिंग ड्रिंक्स जो होते हैं वो यूजुअली हाइड्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, टेम्परेरीली हमें लाइट फील करवा सकते हैं. लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है कि वो बॉडी से स्टोर्ड टॉक्सिन को मैजिकली फ्लश आउट कर देते हैं.
1: ये तो है, देखो गाइस,
0: एक्चुअली बॉडी को सपोर्ट करने का सबसे बेस्ट रियल डिटॉक्स हैबिट्स जो हैं वो हैं प्रॉपर हाइड्रेशन, बैलेंस्ड डाइट, एनफ स्लीप, रेगुलर मूवमेंट, और अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी एडिक्शन में हो तो उसको रोकना.
1: ये सब मेरे लिए एक तरीके से सपना है. नींद ले लूं, हाइड्रेशन
0: ले लूं, खाना अच्छे से खाऊं, सोना, ये तो देखो. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी बेसिक चीजें हैं. और अगर लिवर और किडनीज हेल्दी हैं तो बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती रहेगी 24/7. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. शॉर्ट में यही है कि भाई डिटॉक्स ड्रिंक सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ हाइड्रेशन को.
1: yes.
0: लेकिन असली डिटॉक्स का काम आपका बॉडी ऑलरेडी कर रहा होता है, तो आपको उस प्रोसेस को और अच्छा करने के लिए सिंप्लीफाई करना है चीज. अच्छा खाना खाना है, अच्छे से सोना है, व्यायाम करना है और
1: बुरी आदतों से दूर रहना है.
0: बिल्कुल.
1: अरे और देखो, पर अगर आप डिटॉक्स ड्रिंक जो है फैंसी बनने के लिए अपने ग्लास सिपर को अच्छा प्रिटी दिखाने के लिए पी रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, क्या ही किया जा सकता है. बट थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखते हुए कीजिए, क्योंकि मैंने पीने की कोशिश की थी, मुझे सर्दी हो गई.
0: ध्यान दीजिए और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कसूस।
0: और यहाँ पे भाई एक बहुत ही बढ़िया अपडेट जो है हम आपको देना चाहेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, नहीं हो सके तो पेन पेपर लेके आप लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि अजगल ने जो है रोड क्लोजर्स अनाउंस किए हैं। तो सबसे पहला रोड क्लोजर होगा दुखान रोड टनल का क्लोजर। तो ये टनल जो न्यू अल्डाइन स्ट्रीट वाया बानी हाजर से जो गुजरता है इंटरचेंज टूवर्ड दुखान रोड तक, ये जो रास्ता है, ये जो स्ट्रेच है वो क्लोज रहेगा फ्राइडे 29 मई को 2 बजे से, यानी कि आधी रात 2 से सुबह 10 बजे तक, 2 AM to 10 AM का जो है टाइम है इस क्लोजर का। ऑल्टरनेटिव रूट भी बताया है, आप घराफत अल रायन इंटरचेंज जो है यूज कर सकते हैं, और सबा अल अहमद कॉरिडोर का यू टर्न क्लोजर इसके बारे में बताया गया है। लखबा इंटरचेंज के वहां पे जो है क्लोजर होगा, और कौन सा डायरेक्शन अफेक्टेड होगा ये भी बताया गया है। साउथ बाउंड ट्रैफिक जो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहा है उन पर ज्यादा जो है ये क्लोजर इफेक्ट करेगा। जून 2 से लेके जून 12 तक ये क्लोजर होगा, और हर दिन 12:30 AM से लेके 5 AM तक। और हाँ, आप आसपास के नियर बाई जो रूट्स है, ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। अल घराफा ब्रिज क्लोजर भी बताया गया है, न्यू अल हतीम स्ट्रीट और अल गाबिया स्ट्रीट को कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है वो भी क्लोजर के अंडर आया है। और कौन सा डायरेक्शन अफेक्टेड है ये भी बताया है, नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक जो है उन पर ज्यादा इसका असर पड़ेगा। जून 1 से लेके जून 20 तक हर दिन होगा ये 12:30 AM से लेके सुबह 5 बजे तक। और डिटोर रूट के बारे में बताया गया है, आप राइट लेके अलघराफा स्ट्रीट के थ्रू जा सकते हैं, या फिर अल दुहेल इंटरसेक्शन से यू टर्न ले सकते हैं, स्ट्रेट जा सकते हैं, और वहां से राइट लेके न्यू अल हतीम भी जा सकते हैं। जो ऑलरेडी डाइवर्शन आपको दिए गए होंगे आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। और बानी हजर इंटरचेंज का फुल क्लोजर बताया गया है, जो खलीफा बुलेवार्ड से लेके अल शहामा स्ट्रीट तक जाएगा यहाँ पे क्लोजर रहेगा May 31 से लेके June 9 तक। और टाइमिंग जो है रात और दिन में वेरियस आवर्स में होगा, और जो आपको डाइवर्शंस दिए गए हैं आप वो फॉलो कर सकते हैं। और अजगल ने ये भी बोला है कि आप ट्रैफिक साइंस को फॉलो करें, डाइवर्शंस को फॉलो करें, स्पीड लिमिट ऑब्जर्व करें, और ऑलरेडी अपने ट्रिप को प्लान करके निकले ताकि डिलेज जो है आप अवॉइड कर पाए।
1: एग्जैक्टली, यानी अगर तैयार होने का ऐसा है तो थोड़ा जल्दी शुरू कर दो मेरी तरह, वरना फिर लेट हो जाते हैं।
0: अरे अरे अरे, और यही बात बोलते हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: खूबसूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: यार आयुष्मान के गानों में कहीं ना कहीं पे पानी का एक मुद्दा रहता है.
1: राइट.
0: या तो अंबर से पानी बरसेगा या पानी का रंग के बारे में बात करेगा. क्यों ऐसा है? पानी के साथ क्या है इसका?
1: वो हाइड्रेटेड रहने का याद दिला रहे हैं आपको. वो आपकी बहुत फिक्र करते हैं जैसे हम करते हैं. एग्जैक्टली.
0: 7 करोड़ खुशियां दो इस लड़की को.
1: अरे यार,
0: रुपए नहीं रियाल नहीं, खुशियां दो. महंगी करेंसी तो वो है.
1: कोई बात नहीं.
0: वैसे यहाँ पे हम एक बहुत ही बढ़िया बात जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे. देखिए, कल जो है मैच हुआ था मुंबई और राजस्थान के बीच में, ठीक है.
1: Yes.
0: मुंबई के लिए तो ज्यादा कुछ कॉन्सिक्वेंस वाला मैच नहीं था ये, क्योंकि कुछ ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला था. मगर राजस्थान के लिए था. और फर्क पड़ा, बहुत बड़ा फर्क पड़ा. राजस्थान जो है प्लेऑफ में पहुंच गई. जी हाँ, राजस्थान ने पहले बैटिंग की, 205 रन जो है उन्होंने स्कोर किए. फिर मुंबई की बारी आई, मुंबई ने 175 रन स्कोर किए और ओवर खत्म हो गया था. अगर हम बैटिंग में रन के बारे में बात करें तो जफरा आर्चर, उन्होंने बोला भी है कि यार मैं तो खुद को ऑलराउंडर बोलता हूँ मगर बाकी सब मुझे बॉलर बोलते हैं. उन्होंने 32 रन मारे 15 बॉल्स में. ध्रुव जुरेल ने जो है 26 बॉल्स में 38 रन बनाए. और दासुन शनाका ने 15 बॉल में 29 रन बनाए राजस्थान के लिए. और अगर हम मुंबई की बात करें तो सूर्य कुमार यादव, उन्होंने 42 बॉल्स में 60 रन बनाए. हार्दिक पांड्या ने 15 बॉल में 34 बनाए. विल जैक्स ने भी जो है 18 में 33 बनाए. बट इनका इतना बढ़िया खेल भी जो है आगे तक नहीं आ पाया.
1: देखो क्या कर लोगे, मतलब जब जब बाकी सारे सब्जेक्ट फेल हो गए हो तो मोरल साइंस में पास होके क्या करोगे.
0: और बुरा इस बात का भी लगा कि शर्मा जी जो है वो शून्य पे ही चले गए. 4 बॉल खेल के वो चले गए शून्य पे, तो उसका भी हमें बहुत बुरा लगा. उनका जो है फॉर्म उतना नहीं रहा. अगर हम राजस्थान की बैटिंग की पूरी बात करें तो वैभव सूर्यवंशी ने 4 रन बनाए 6 बॉलों में. यशस्वी जायसवाल ने 17 बॉल्स में 27 बनाए. अगर हम ध्यान से इनका पूरा देखेंगे ना, राजस्थान के बैटिंग का देखेंगे, तो 50 तो किसी ने स्कोर नहीं किया. किसी ने भी 50 तक का रन स्कोर नहीं किया.
1: कि मुंबई ने थोड़ा अंडा परफॉर्म किया था. हाँ. इस वजह से चल गया.
0: और डिसेंट तरीके से डबल डिजिट स्कोर्स जो है मल्टीपल प्लेयर्स लेकर आए, जिसके कारण जो है वो 205 के टारगेट तक पहुंच गए. और अगर हम एक्स्ट्रास की बात करें तो 9 रन एक्स्ट्रास में भी आए थे. तो अगर हम 205 में से 9 रन कम कर दे तो 194 तो इन्होंने ऐसे ही अपने रन्स के थ्रू ही बनाए थे. बाकी 9 रन ऐड करके 205 हो गए. बट कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने बोला कि भाई इसका कॉन्सिक्वेंस कुछ है नहीं मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई हारे जीते कुछ फर्क नहीं पड़ता. मगर राजस्थान
1: मुंबई के साथ जैसा हुआ वैसा ही एक और मैच हुआ जो अच्छा? पता नहीं क्यों ही हुआ.
0: अच्छा,
1: तो दिल्ली और कोलकाता के बीच में भी मैच था.
0: okay.
1: जो पता नहीं क्यों
0: ना, वो तो क्यों ही हुआ कोई नहीं जानता था.
1: कोई नहीं जानता. लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो दिल्ली जो है वो जीत गई, कोलकाता फिर से हार गई.
0: क्या बात कर रहे हैं.
1: कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि किसी भी टीम को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ ज्यादा
0: बिल्कुल
1: इसके इस मैच से. पर हाँ, राजस्थान जो है वो प्लेऑफ में पहुंच गई. बस इस बात का
0: राजस्थान को ही फायदा हुआ है इसका. राजस्थान बेचारी पंजाब को पीछे कर दिया उन्होंने. पंजाब इतना यार, बेचारे श्रेयस अय्यर का सेंचुरी बर्बाद हो गया यार. उसने तो सेंचुरी भी मारी थी. उसके सेंचुरी मारने के बावजूद बेचारी पंजाब जो है 5वीं पोजीशन में आ गई. अब क्या ही हो सकता है प्लेऑफ में. तो राजस्थान ने
1: कैलकुलेशन लगाई, अब क्या कर सकते हैं, किसको हारना पड़ेगा किसको जीतना पड़ेगा.
0: अब कोई कैलकुलेशन का फायदा नहीं, अब प्लेऑफ ही बचा है बस. अब प्लेऑफ ही बचा हुआ है जिसमें हम देखते हैं कि कौन आएगा आगे. और मैचेस की अगर हम बात करें तो कल से जो है शुरू हो जाएगा प्लेऑफ
1: का सिलसिला.
0: तो बात करते हैं उसके बारे में भी डिटेल में जरा. अभी फिलहाल यहाँ पे गाना प्ले करते हैं, थोड़े फैक्ट्स वैक्ट्स निकालने हैं मुझे. आप रॉक स्टार सुनिए अली जफर की आवाज में और कहते रहिए
1: जियो बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
3: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million riyals cash prizes.
4: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 riyals growth पर पाइए एक coupon.
3: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
4: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
5: अब होगी बिंदास मॉर्निंग
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
7: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: सोच के देखो क्या कनिंग टेक्निक है। लड़की बहुत टाइम से सोच रही थी भाई दुपट्टा रंगना है, मगर जो भैया रंगते हैं यूजुअली मार्केट में बैठ के वो आ नहीं रहे हैं, बहुत बिजी चल रहे हैं। तो उन्हें मिला एक लड़का, लड़का मिला, उन्होंने सोचा कि इसी से काम निकलवा लेते हैं। ये चल रहा है आजकल, देखो जो जो आप लोग अपने जुगाड़ करवाते हो उसके गाने बन रहे हैं आजकल, हैं ये ठीक नहीं है, ये समाज के लड़कों के साथ गलत हो रहा है।
1: अच्छा, और
0: मैं मेनिनिज्म की बात करना चाहता हूँ।
1: उसके मेनिनिज्म आप अपना रखिए, आपको वो याद
0: मेरा सार्कास्म समझ में नहीं आया,
1: मुझे आ गया।
0: तो मैं यही याद दिलाना चाहूंगा कि अभी भी दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। कोई बात नहीं, जिन्हें पता है उन्हें पता है। बोलिए आप बोलिए।
1: किसी को नहीं पता है, ठीक है। किसी को नहीं पता है, ये इंसान खुद ही जोक मार के खुद ही हंस के खुश हो जाता है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि उस चीज का सेंस बन रहा है नहीं
0: बेटा। इट इज सटल यू नो, इट्स सटल इट इज सटल,
1: कुछ भी
0: इट इज सटल,
1: कुछ भी
0: इट इज सटल,
1: कुछ भी
0: इट इज द नेटिव एक्सीलेंट कॉकनी विट
1: व्हाटएवर।
0: ओके चलिए बताइए क्या क्या राय है आपकी इस बात पे।
1: आपको उसके दुपट्टे को रंगने से इतनी दिक्कत हो रही है? हाँ, तब कहा थे आप जब वो बोल रही थी कि चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, मेरे यार दी गड्डी दी नाल दी, मतलब मेरे यार की गड्डी के कलर की मेरी चुन्नी रंग दो यार।
0: मैंने नहीं रंगी ना।
1: क्यों नहीं रंगी? गड्डी होनी चाहिए ना,
0: गड्डी होनी चाहिए। साइकिल है हरकुलिस की, उससे क्या रंग दूंगा मैं। वो भी लाल रंग की है वैसे। बट फिर भी गाइज मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए दुपट्टा रंगने में कोई गलत बात नहीं है,
1: बिल्कुल नहीं है, दुपट्टा इम्पोर्टेंट।
0: हाँ मैं याद यही दिलाना चाहता हूँ कि भाई अपने कपड़े भी खुद दो ना, वो ये मत करना कि मम्मी से धुला रहे हो और यहाँ पे दुपट्टा धोके दे रहे हो। आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा बेटे।
1: गाइस दुपट्टे की बात करते हुए ईद के कपड़ों की टेंशन वापस हो गई है मुझे।
0: मैं तो बिल्कुल सेट करके बैठा हूँ भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा पूरा सॉर्टेड है।
1: ये इंसान हर ईद पे सेम कुर्ता पहन लेगा, किसी को याद नहीं रहेगा। मेरा नहीं। जो सूट है अगर उसमें मैंने इयररिंग भी सेम पहन ली तो भी इंस्टाग्राम पे लोग बोलेंगे ओह ये तो परसों ही पहना था, ओह ये तो कल ही पहना था, ओह ये तो पिछली की पिछली ईद में ही पहना था।
0: यार वो इसलिए क्योंकि आप हमेशा लोगों के याद में रहते हो, हम कहाँ हैं। बट यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे हमने ईद के सेलिब्रेशन की बात की है, आपके पास मौका है हमारे साथ रेडियो ऑलिव के साथ ईद सेलिब्रेट करने का। आप अपने फैमिली के साथ आगे हमारे साथ ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं, ईद मजलिस का हिस्सा बन सकते हैं। कोड़ीकोट स्टार रेस्टोरेंट में जाके जो है हम बिरयानी सब खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप अपने फैमिली के साथ अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स में से सेलेक्टेड लोगों को मौका मिलेगा हमारे साथ ईद मजलिस सेलिब्रेट करने का। तो रजिस्टर करने के लिए आपको मैसेज करना है ई एम स्पेस आपका नाम आप मैसेज कर दीजिए हमें। और यही बोलते हुए हम जरा मेन मुद्दे पर आते हैं,
1: मुद्दे की बात
0: पर आते हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। देखिए
1: पूरी तैयारी के साथ आए हैं,
0: पूरे तैयारी के साथ लिख लिख कर
1: पढ़ पढ़ जो है बीच में बात ही नहीं करी, ठीक है। वो पूरे टाइम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं और उन्होंने पूरा फैक्ट्स निकाल लिए हैं और अब वो आपको जो है बहकाने की बहलाने की फुसलाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप बैंगलोर के साथ जो है खड़े रहिएगा।
0: क्यों खड़े रहना है, बैठ जाओ पहले आराम से, ठीक है। सालों से खड़े थे एक ही बार तो साला कप नाम दे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले इस सीजन को ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। इस सीजन में लीग स्टैंडिंग में ऑब्वियसली बैंगलोर ने जो है टॉप में फिनिश किया है, 18 पॉइंट्स हैं। गुजरात ने भी 18 पॉइंट्स जीते हैं बट रन रेट के फर्क में वो सेकेंड पोजिशन में, ठीक है। और प्ले ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों फ्रेंचाइजी जो हैं ये क्वालिफायर वन के लिए जो है क्वालिफाई कर चुके हैं, टॉप टू पोजीशन में हैं। और इस लीग में अगर इनका हेड टू हेड देखे तो इन्होंने दो बार जो है लीग स्टेज में खेला और रीसेंट मैच जो है वो गुजरात ने जीता। और गुजरात अपना विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा ये तो हमें वक्त ही बताएगा। बट यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि बैंगलोर ने टोटल प्ले ऑफ मैचेस जो है वो 17 खेले और 11 बार वो प्ले ऑफ में आए हैं। 17 मैचेस उन्होंने प्ले ऑफ के खेले हैं जिसमें से 6 प्ले ऑफ विन्स हैं उनके पास, 11 प्ले ऑफ लूजेस हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात 3 बार प्ले ऑफ में आया है, जिसमें टोटल 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, उसमें से 3 बार वो जीते हैं, 2 बार वो हारे हैं, और 2 बार फाइनल्स में भी गए हैं, जिसमें से एक फाइनल में वो चेन्नई के साथ हारे थे और एक फाइनल में वो जीते भी थे 2022 के फाइनल में, और 2025 के फाइनल में जो है बैंगलोर जीती थी।
1: यस, क्या कहना चाहते हैं आप इतना सब कह के?
0: मैं यही बताना चाहता हूँ, देखिए गेम का है मामला, कभी भी किसी की भी तरफ जो है जा सकता है, डिफेंडिंग चैंपियंस बैंगलोर गिर भी सकती है या फिर जीत भी सकती है,
1: जीत सकती है,
0: या फिर क्या कहते हैं गुजरात 4 साल के ड्रॉट के बाद अपना चैंपियंस का जो खिताब है वापस लेकर आ सकती है। गुजरात की खास बात यह है कि इनका जो पहला साल था उसी में जीत गए थे।
1: हाँ।
0: तो ये भी
1: वो
0: एक
1: पहली बार जीतने देते हैं ना।
0: हाँ, नहीं ऐसा नहीं था, बैंगलोर को नहीं दिया था ना बैंगलोर को तो बहुत टाइम दिया हमने
1: ठीक है, एक्सक्यूज मी, जितनी बार गुजरात ने जो है मैच नहीं खेला उससे ज्यादा बार प्लेऑफ जीता है, ठीक है, बैंगलोर ने।
0: क्या क्या क्या क्या?
1: जितनी बार गुजरात ने
0: 5 मैचेस ही खेले तो उसमें क्या ही बोल रहा
1: है, सोचिए 5 मैचेस ही उन्होंने खेले और उससे ज्यादा तो बैंगलोर ने जीते हैं, यानी इतनी पुरानी टीम है, इतने पहले से खेल रही है, सो कंपेयर करना मुझे नहीं लगता कि बनता है। बट हाँ देखिए, अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये जो टूर्नामेंट है ये ऐसे जोन में आ चुका है जहां पर जीते कोई भी हारे कोई भी, जीत क्रिकेट की होनी चाहिए। देखो
0: बिल्कुल बिल्कुल क्रिकेट की,
1: अगर अगर बैंगलोर हारी तो मैं जो है क्रिकेट की तरफ हूँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं,
1: जीती तो फिर तो जीती ही गई।
0: हाँ भाई, देखते हैं फिलहाल अभी क्या होता है यहाँ पे। ए खुदा पांचाला मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश.
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
4: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
6: इब्राहिम भाई, ईद मुबारक.
7: ईद मुबारक.
6: तौफीक चाचा, ईद मुबारक.
7: आप
6: चाचा? मैं इब्राहिम. हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को.
7: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
8: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
9: हेलो हेलो, तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां. क्यों चचा?
10: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
11: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी जाए.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीप डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा कॉन्टैक्ट 310-999-45
3: Varadma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma, Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket, supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश.
0: स्टेशन क्लॉक में 9:07 हो रहे हैं और यहां पे जो है बहुत ही बढ़िया बात जो है हम आपको बताना चाहेंगे, एक लोकल अपडेट देना चाहेंगे. देखिए, कतारा ने ईद अल अधा के लिए 3 दिन का एंटरटेनमेंट और कल्चरल सेलिब्रेशन जो है अनाउंस किया है. रोज शाम 4 बजे और रात 9 बजे कतरी फोक बैंड जो है लाइव परफॉर्म करेगा वहां पे. और बच्चों के लिए कतारा ईद गिफ्ट्स इवेंट शाम 5:30 से होगा. और कतारा प्रोमिनेट पर मिलिट्री परेड 5:45 PM और 6:45 PM पर स्पेशल अट्रैक्शन रहेगा. और हर रात 8:30 PM से ग्रैंड फायरवर्क्स शो होगा जो ईद सेलिब्रेशन को कलरफुल और बहुत ही बढ़िया बना देंगे.
1: ये जो किड्स वाला हो रहा है गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इसमें एज लिमिट क्या है?
0: इसमें एज लिमिट छोड़ो भाई, आप तो आप कब कब पैदा हुए थे?
1: 2003
0: लगा लो, उनका होगा 2020 कुछ.
1: एक्सक्यूज मी, 2020 में कोई पैदा नहीं होता इतने, अभी तो कौन पैदा.
0: 2020 में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हुए थे, ठीक है. और नहीं, एक्चुअली 21 में. और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि
1: 2020 में मैं 11th स्टैंडर्ड में थी.
0: कहाँ पे थे आप?
1: 11th स्टैंडर्ड
0: में. 11th स्टैंडर्ड में 2020 में मेरा कॉलेज पूरा हो गया था. मेरा एक बैक पेपर था, उसका रिजल्ट आने के लिए मैं वेट कर रहा था और 2020 के फरवरी को मैंने ज्वाइन कर लिया था रेडियो में.
1: ओह माय गॉड,
0: या क्या करे
1: सीनियर लोग
0: सीनियर लोग, या छोटे से सीनियर्स हैं हम, क्या कर रहे. खड़े हो जाओ, सलाम टोको.
1: सर
0: मजाक कर रहा हूँ, ठीक है. बट यहाँ पे जो है गाने प्ले करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ और भी बातें जो है आपके साथ करेंगे फिलहाल. और याद दिला रहे हैं कि आप रजिस्टर कर सकते हैं ईद मजलिस सेलिब्रेशन के लिए. सेलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को मौका मिलेगा हमारे साथ अपने फैमिली को लेकर आके ईद सेलिब्रेट करने का. EM स्पेस आपका नाम, आपको मैसेज करना है 3311063 पर. और यहाँ पे पति पत्नी और वो दो
1: दो
0: दो
1: वो दो,
0: वो दो. ओके, नाउ इंटरेस्टिंग. गाना सुनते हैं इस मूवी का नील कमल सिंह और शिवा की आवाज में. स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलवे 106.3 FM.
1: जियो बिंदास.

0: साजन चले ससुराल मूवी का गाना हमने सुना, कुमार सानू और अलका याग्निक ने मिलके ये गाना गाया है। मैं सोच रहा था यार उस टाइम पे बॉलीवुड के मूवी टाइटल्स भी काफी मतलब वैकी होते थे, क्वर्की होते थे, मतलब अच्छा लगता था
1: क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, साजन चले ससुराल,
0: प्रेम अगन, मैं प्रेम की दीवानी
1: हूं, प्रेम की दीवानी, मतलब मैंने प्यार क्यों किया,
0: कहानी है इस टाइटल में।
1: हाँ।
0: मतलब अगर आप मूवी भी ना देखो आपको समझ में आ जाएगी।
1: यूट्यूब नहीं था ना उतना।
0: हाँ।
1: वो तो उनको क्या है कि ट्रेलर नहीं देख सकते थे सब लोग ऐसे,
0: बिल्कुल,
1: तो बस कि नाम से पता चल जाना चाहिए कि नई मूवी आ रही है, हसीना मान जाएगी,
0: हसीना मान जाएगी,
1: बड़े भैया तो छोटे भैया, सुभान अल्लाह,
0: वाह वाह, मतलब बहुत ही थॉट गया है इसके पीछे, जाना भी चाहिए।
1: हाँ।
0: और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत ही खास बात जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए हम जानते हैं आज जो है वर्ल्ड फुटबॉल डे है और आज के इस पावन
1: अवसर पर फुटबॉल की बात करनी चाहिए।
0: और
1: मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में जिस तरीके से मूवीज का नाम रखा जाता था बिल्कुल उसी तरह फुटबॉल का नाम भी रखा गया।
0: अच्छा।
1: एक दिन जो है किसी चीज को पैर मार दिया, अरे यार ये बॉल को तो हमने पैर मार दिया, इसका नाम रखना चाहिए, तो गेम है, क्या नाम रखे, क्या नाम रखे, फुटबॉल रख लेते हैं, क्या बोलते
0: फुटबॉल,
1: क्योंकि हमने फुट से बॉल को मारा है तो फुटबॉल नाम रख लेते हैं, कैसा रहेगा बताओ।
0: ये आपने जो सोच विचार इसके पीछे किया है काबिल तारीफ है, ये मैं आपकी प्रशंसा जो है जरूर हमारे मैनेजर से भी करूंगा,
1: मैं आपको आगे करूंगा, तारीफ करूंगा।
0: आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू टू द सीईओ फॉर अ गैलेंट्री अवार्ड,
1: गारंटी अवार्ड गाइस,
0: बहुत गारंटी है जो डिसीजन आपने लिया है उसमें गारंटी है। बढ़िया, यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि आज बिग सॉरी एक मिनट है मैं जरा फंबल कर गया। बेसिकली हाँ हुआ ये कि जो टैब मैं खोलने की कोशिश कर रहा था वो खोल नहीं रहा था, वो लोड हो रहा था।
1: आप आराम से जो है टैब खोल लीजिए, मैं बस बताना चाहती हूँ कि 4 बिलियन लोग जो है 4 बिलियन फुटबॉल फैंस जो है वो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, मतलब 4 बिलियन
0: हाफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन।
1: यस, और सबसे ज्यादा फेवरेट स्पोर्ट है ये लोगों का, और मी बीइंग अ क्रिकेट फैन मुझे तो ऐसा ही लगता था कि यार क्रिकेट से बड़ा तो कोई स्पोर्ट हो ही नहीं सकता।
0: उसका एक रीजन भी है बहुत बड़ा, जैसे कि अब इसमें आयरनी नहीं देखना आप, ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, उनका ओरिजिनेशन जो है वो इंग्लैंड से ही माना जाता है, मगर क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, तो उस टाइम के उस एरा के जो इंग्लिश लोग थे जो एलीट इंग्लिशमैन थे वो क्रिकेट खेलते थे। अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज बनी, धीरे धीरे फुटबॉल जो है वो मासेस का गेम बन गया, नॉर्मल लोग का गेम बन गया, और जिन्होंने लगान देखा है शायद उनको भी ये बात जो है रिलेट करेगी कि जो भी हमने लगान में स्टोरी देखी कि क्रिकेट उस टाइम के एलीट लोगों का गेम था, फुटबॉल पे वो लागू नहीं था, फुटबॉल कोई भी खेल सकता था, एलीट हो या फिर तुम नॉर्मल हो, तुम्हारा क्लास मैटर नहीं करता था उस टाइम पे उस सोसाइटी के हिसाब से, इसलिए फुटबॉल को जो एक लोकप्रियता मिली है उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है। एक फैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच में खेलने वाला जो ओल्डेस्ट प्लेयर है, ऐसा प्लेयर जिसकी उम्र सबसे ज्यादा थी, वो इजिप्ट के एक प्लेयर हैं इसाम अल हदरी करके, 2018 के वर्ल्ड कप में उन्होंने सऊदी अरेबिया के खिलाफ खेला था, तब उनकी आयु जो थी वो थी 45 years 161 days ओल्ड।
1: Wow.
0: तो उस एज में फुटबॉल खेल पाना इतना आसान नहीं है, फुटबॉल जो है फिजिकली काफी डिमांडिंग गेम है।
1: yes.
0: और बहुत ही ज्यादा जो है फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है, 90 मिनट्स थ्रू आउट हम भागते रहते हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो वो फिटनेस मेंटेन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ऐसा ही एक काफी बढ़िया फैक्ट जो है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में।
1: yes.
0: अभी जरा गाना प्ले करते हैं और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जीव बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में 9:35 हो रहे हैं और आज फुटबॉल डे के इस पावन अवसर पर हम एक और चीज आपको बताना चाहते हैं। बहुत ही छोटा सा फैक्ट है, बट शायद किसी किसी को बुरा लग सकता है या फिर ये लग सकता है कि यार ऐसा क्यों होता है यार करके, मगर जो सच है वो सच है। सच को हम कब तक छुपाएंगे, तो वो चीज जो है मैं बताने वाला हूँ, कशिश के साथ मिलकर बताने वाला हूँ। बात यह है कि हम सब जानते हैं कि फुटबॉल क्रिकेट दोनों जो है ऐसे बड़े स्पोर्ट्स इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुए हैं, बट वर्ल्ड स्टेज में फुटबॉल में और क्रिकेट में दोनों में इंग्लैंड ने बस एक ही बार जीता है। दिल का दरिया
1: खड़ा हुआ आज भी वही। यार देखो ऐसा होता है, अक्सर होता है। मैं भी
0: ओ रे पिया,
1: अब आप कुछ भी कर रहे हो ठीक है।
0: नहीं, सैड वाला वर्जन गाने की कोशिश कर रहा था, बट हैप्पी वाला आ गया बीच में। वो मुझे खुशी होगी ना कि एक ना करके। बढ़िया। मैं बताता हूँ आपको, 1966 का जो वर्ल्ड कप था उसमें इंग्लैंड ने जीता था।
1: अकेले खेल रहे थे क्या?
0: नहीं नहीं, और भी थे, ज्यादा खास लोग नहीं थे मुझे लगता है।
1: तब वो उन्होंने ये किया हुआ, अरे हमारा गेम है, मेरा मेरी बॉल है, मेरे को नहीं जिताओगे
0: मैं लेके चले जाऊंगा, ऐसा मत करो, लीड कल के
1: मैं मम्मी से शिकायत कर दूंगा।
0: ठीक है। नहीं, बट उस टाइम के जो प्लेयर थे सर बॉबी चार्ल्टन, काफी बड़ा नाम है इंग्लिश फुटबॉल में, और टीम भी अच्छी थी वैसे।
1: टीम अच्छी थी, एंड क्या होता है कि तब नया नया उन्होंने इन्वेंट किया था, एंड क्या है हमें रूल्स पता है।
0: मैं ये तो बहुत, अगर हम देखें फुटबॉल हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1930 में सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था जिसे उरुग्वे ने जीता था।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद का वर्ल्ड कप भी उरुग्वे ने जीता था, और उसके 1930 से लेकर 66 तक 36 ईयर्स लगे इंग्लैंड को एक
1: अच्छी टीम जो है वो तैयार करने में
0: और फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने में। और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो 2018-19 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जाके इंग्लैंड ने क्रिकेट में जीता था और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ था। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल फाइनल था वो, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अभी भी लोग जो हैं बटे हुए हैं कि यार ये ऐसा कर देना चाहिए था। इवन दो ट्रॉफी जो है इंग्लैंड ने ही उठाई, मगर बहुत सारे लोग दिल से अभी भी न्यूजीलैंड को ही विनर मानते हैं। इवन मैं भी वही मानता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे लास्ट में जो उन्होंने रूल्स बोले वो बैट्समैन को फेवर करने वाले थे, बैटिंग फेवर करने लायक रूल हो गया था, बॉलिंग को उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। तो वो एक चीज जो है अभी भी थोड़ा बुरा लगा, बट कोई बात नहीं, दे प्लेड वेल। बट एक ही ट्रॉफी है दोनों के पास, मतलब फुटबॉल टीम के पास भी, क्रिकेट टीम के पास भी।
1: ठीक है।
0: तो ऐसा नहीं ना कि देखो वो बहुत ही सिम्फनी में चल रहे हैं। अगर ऐसा होता कि फुटबॉल वाले ज्यादा लेके आ गए तो क्रिकेट वालों की लगा देते। क्रिकेट वाले ज्यादा लेके आए तो फुटबॉल वाले लगा देते।
1: हम दोनों से ही इक्वली प्यार करते हैं और ऐसा।
0: हाँ, ऐसा वो सही है, वो तालमेल अच्छा बैठना चाहिए। और यही बात बोलते हुए अपन लोग भी जरा आगे बढ़ते हैं, अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं आर राजकुमार का गाना।
1: आए हाय,
0: तो एक गाना सुनिए, एक साथ बैठकर और एंजॉय करिए, और कहते रहिए
1: जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो Ooredoo ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31st मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
3: This hour is brought to you by
4: Homes Are Us. We complete your home.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: पावधरिया और निकिता गांधी की आवाज में सूर्यवंशी मूवी का गाना। मुझे एक चीज में बहुत कंफ्यूजन है कि भाई जो मेल वॉइस है इसमें उनका नाम पावधरिया है। जब मैंने पहली बार जब मैं देख रहा था तो आई वॉज अबाउट टू से पाव धनिया, फिर मैंने सोचा नहीं ये मंडी थोड़ी ना है यहाँ पे, ऐसे कैसे हो सकता है। बट या नेम्स आर क्वाइट स्ट्रेंज समटाइम्स।
1: या
0: ये एक बहुत बड़ी चीज है।
1: सुदैव
0: तो यस्टरडे में मिला था,
1: यस्टरडे में मिला था, वेरी नाइस,
0: यू नो यस्टरडे। सी द प्रॉब्लम इज तो कल मेरी मुलाकात हुई थी किसी से, उन्होंने पूछा कि नाम क्या है आपका, मैंने बोला सुदैव, तो बोला सुदीव, मैंने नहीं सुदैव, सुदैव, या इट्स सुदैव,
1: सुदैव,
0: सुदैव,
1: कशिश। इट्स ओके गाइस, मुस्कान के आने का टाइम हो गया है,
0: मुस्कान के आने का टाइम हो चुका है और मुस्कान थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी,
1: मुस्कान की फैलान लेके, व्हाट
0: पूरे फैलान के साथ मुस्कान यहाँ आ जाएगी।
1: सब बहुत ही बड़े दिल के साथ, ऐसे खुली बाहों के साथ उनका स्वागत कीजिएगा और हमें दुआओं में।
0: 90s में हम ऐसे लोग नहीं, ऐसे कैरेक्टर्स नहीं होते जो मतलब इंग्लिश लोगों को कॉपी करते,
1: पूरा ट्राई करते थे कि इंग्लिश बन सके, बट होता नहीं था, हमें पता हो रहा था, बट बस दिल रखने के लिए
0: वही कोशिश कर रहे हैं हम भी नेटिव कॉकनी एक्सेंट में बात करने की कोशिश करेंगे।
1: मैं तो बस सुदैव के एक्सेंट में बात करने की कोशिश कर रही हूँ
0: और मैं तो निशा के एक्सेंट में
1: सुन लेंगी ना अभी।
0: यस, तो फिलहाल यही बोलते हुए गाइस आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा गाना आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं पेपॉन की आवाज में, हमारी अधूरी कहानी। हमारी तो हो चुकी है, हम कल सुबह,
1: हमारी पूरी कहानी हो गई अब,
0: ठीक है, अब मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, स्टे ट्यून्ड।
1: जी अमिता।

0: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
1: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.

0: सो पहले ना एयरपोर्ट सिर्फ ट्रैवल के लिए होता था और अब फुल फैशन रनवे बन चुका है, ये तो हम सबको पता है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। एंड अभी इतना लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, ईद की छुट्टियां हैं, एवरीबॉडी इज प्लानिंग टू गो आउट। किसी किसी की फैमिली यहाँ पर आ रही है, किसी की फैमिली ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। सो अगर आप भी कोई फ्लाइट लेने वाले हो तो जैसे फ्लाइट लेने वाले हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एयरपोर्ट फैशन एक्चुअली सोशल मीडिया कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे से अब लोग जान चुके हैं। सेलिब्रिटीज़ पेपराजीज़ फ़ोटो के थ्रू ट्रेंड क्रिएट करते हैं और ओवर साइज्ड जो शर्ट्स हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो मैं हुडीज़ तो नहीं कह सकती, जो बड़े बड़े टोट बैग्स हैं, स्नीकर्स, सनग्लासेस, ये सब आपको एकदम क्लासी दिखा सकते हैं, जो बहुत कम्फर्टेबल भी रखते हैं प्लस आपको बहुत कोजी भी फील करवाते हैं। सो फुल आई वोक अप लाइक दिस वाला लुक हो जाता है। और ऑनेस्टली एयरपोर्ट आउटफिट का रियल चैलेंज क्या है पता है, कंफर्टेबल भी लगे और स्टाइलिश भी, क्योंकि लोग फ्लाइट्स में जीन्स कभी कभी आपको परेशान सी करने लग जाती है, एनिमी लगने लग जाती है। सो आई विल से कि कॉटन पैंट्स, लिनन पैंट्स, इन सबको आप अपने एयरपोर्ट लुक में शामिल कर सकते हो। सो अगर आप इस लॉन्ग वीकेंड पर ट्रैवल कर रहे हो, देन यू हैव दिस रैंडम एयरपोर्ट फोटो वायरल वाला लुक आप बना सकते हैं। इसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कतर में चल रही है, वी विल टॉक अबाउट दैट। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: कूसम रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूसम।

0: CB2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

कल जैसे ही छुट्टियां अनाउंस हुई एवरीबडी हैज अ प्लान, मतलब वैसे तो हर किसी ने प्लान बना ही लिया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि छुट्टियां जो है वो अच्छी खासी हैं, सो सब ने अपने अपने प्लान्स बनाना शुरू कर दिए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम पे, हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। कतर में ऑफिशियली रियल समर स्टार्ट होने वाला है और जो मीट्रियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने अनाउंस किया है कि आज जो स्टार है वो दिख जाएगा जिससे जो गर्मी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और गल्फ कल्चर में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीजन साइन माना जाता है। पुराने टाइम में वेदर फॉरकास्टिंग स्टार्स और स्काई ऑब्जर्वेशन से ही की जाती थी। सो स्ट्रॉन्गेस्ट हीट, डस्टी विंड और इंटेंस समर फेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली नेक्स्ट 40 डेज सीरियस गल्फ समर होने वाला है और दोहा में जो लोग रहते हैं वो ऑलरेडी फील कर सकते हैं, जो पिछले साल या उससे पिछले साल इस गर्मी को देख पाए हैं। सुबह बाहर निकलो और लगता है कि किसी ने हेयर ड्रायर फेस पर चला दिया, इतनी तेज हवा चलती है वो भी एकदम गर्म। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इस पीरियड में हाइड्रेशन जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनर्जी, मूड, स्लीप, जो कॉन्सेंट्रेशन है, सब कुछ बेसिकली इसी पर डिपेंड करता है। सो आई विल से कि आपको ध्यान रखना है अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का, सनग्लासेस का और सनस्क्रीन का। बाकी की चीजें तो देखो हमारे हाथ में है नहीं। सो इस लॉन्ग वीकेंड को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए मुस्कान है आपके साथ। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू. और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है. और अभी एक सबसे पहले किताब की बात कर लेते हैं. सो एडल्टहुड को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती हुई किताब जिसका नाम है द नेम सेक.
1: ओके, बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: सो जंपा लहरी की ये ग्लोबली लव्ड बेस्ट सेलर बुक है. और ये लाउड ड्रामा वाली स्टोरी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट इमोशनल स्टोरी टेलिंग है. बुक जो है वो एक हिंदी इंडियन फैमिली की जर्नी फॉलो करती है जो अमेरिका शिफ्ट होती है. और मेन कैरेक्टर जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करता है. सो इंडियन भी और अमेरिकन भी दोनों मिक्स है, लेकिन फुली दोनों में कंफर्टेबल आपको नहीं लगने वाली, क्योंकि ये फीलिंग आज की जनरेशन को भी काफ़ी रिलेटेबल लगती है. डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, एक्सपेक्टेशंस और अडल्टहुड में एक्चुअली मैं कौन हूँ वाला क्वेश्चन. भाई बुक आपको बहुत रियल साउंड करने वाली है. इसका राइटिंग स्टाइल बहुत सिंपल है, लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप. और ऑनेस्टली ये उन लोगों के लिए बुक है जो यू नो ख़त्म होने के बाद भी याद रखते हैं कि यार व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक इट वाज, और दो चार दिन उस किताब के बारे में बात करना चाहते हैं. सो यू कैन रीड दिस बुक. और सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. बाय द वे, व्हाट इज योर प्लान फॉर दिस लॉन्ग लॉन्ग वीकेंड? स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
2: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
3: Eid Mubarak.
4: Taufik chacha, Eid Mubarak.
5: Aap?
4: Chacha, main, Ibrahim.
3: Har jumme raat aata hu
4: tumhari biryani khane ko.
5: Are miyan, Taufik chacha ko kuch bhi yaad nahi. Tab aap bhool gaye. बिरयानी भी
6: एक काम करते हैं इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं
7: ए हेलो हेलो तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां क्यों चचा
8: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ
9: एक मिनट रुको बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेयर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट, अब बिन उमरान में।
7: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

कल दो मैचेस थे और अगर मैं बात करूं शाम के मैच की तो इट वाज दिल्ली वर्सेस कोलकाता जिसमें दिल्ली ने मैच जीता 203 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर. कोलकाता ने 10 विकेट के नुकसान पे ऑल आउट हो गई, मतलब टीम 18 ओवर 4 बॉल्स में और रन्स बनाए थे सिर्फ 163. काफी लंबा डिफरेंस आ गया था. सो टुडे इज बेंगलुरु वर्सेस गुजरात और आज मैं बात करने वाली हूँ प्ले ऑफ की. चार टीमों के चार कॉमन फैक्टर हैं और सभी के टॉप थ्री जो बैटर्स हैं उन्होंने मिलकर 1300 प्लस रन बनाए हैं लगातार. तीन से ज्यादा उनमें किसी की अपनी हार सामने नहीं देखी है. सो वी विल टॉक अबाउट दैट. क्वालिफायर वन, क्वालिफायर टू और फाइनल और एनिमिलेटर और सारी टीम्स की बात करेंगे. सो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. कौन कौन सी टीम्स हैं, कौन कौन से यू नो फाइनल मैचेस होने वाले हैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको. सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: क्योंकि लाइफ मस्त है.
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम.

0: सो इस पूरे टूर्नामेंट में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, यू नो, पांच टीमें ऐसी रही हैं जिनकी तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीन बैटर्स ने मिलकर 1300 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसमें से चार टीम ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। सिर्फ पंजाब की टीम ऐसी रही जिसके तीन बैटर्स ने मिलकर 1300 रन का आंकड़ा जो था वो पार किया, लेकिन उसे प्लेऑफ में जगह नहीं मिली। सो बाकी की पांच टीम की ये तीन बेस्ट रन स्कोरर जो है वो मिलकर 1200 रन नहीं बना पाए हैं। सो अब बात करते हैं बैंगलोर के टॉप थ्री बैटर्स की, तो विराट कोहली, देवदत्त पड्डिकल और रजत पाटीदार, इन सबका स्ट्राइक रेट और रन बहुत ज्यादा है। फिर अगर मैं गुजरात की बात करूं तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर, दोनों टीम्स बहुत ही अमेजिंग खेली हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है हैदराबाद का, यहाँ पर भी ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और हैंड्रिक क्लासन, ये तीनों ही बेस्ट बैटर्स में आते हैं। और उसके बाद आता है फिर राजस्थान, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का तो मतलब हर जगह नाम है, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल ने भी बहुत कमाल दिखाया है। सो बैंगलोर के टॉप थ्री बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, भुवनेश्वर कुमार, रासिक सलाम और जोश हेजलवुड। भाई इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, इसीलिए तो ये टीम्स यहाँ तक पहुंची है ना। विच इज योर फेवरेट टीम बाय द वे? नंबर है 3311063। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, और अगले मैचेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिनकी लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है कि कब कब कहां कहां पे कितने मैचेस होने वाले हैं। सो यस्टरडे विल बी बेंगलुरु वर्सेस गुजरात, जिसमें क्वालिफायर वन होगा। फिर उसके बाद राजस्थान वर्सेज हैदराबाद होगा 27 तारीख को। फिर क्वालिफायर का सेकेंड मैच होगा जिसमें अभी टीम्स फाइनल नहीं हुई है, और फाइनल मैच होगा 31 मई को। और सारे मैचेस जो है इवनिंग में का टाइम 5 o'clock स्टार्ट होने वाले हैं। सो यस, ये जो चार टीम्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट मैचेस खेलने वाली है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। सो आप बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। बाय द वे नंबर इज सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
0: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
0: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए spectacular

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

ईद से पहले ना सडनली सबको लगता है कि मेरे पास ना पहनने के लिए तो कुछ है ही नहीं, वार्डरोब फुल होती है, लेकिन ईद के टाइम पर ब्रेन बोलता है कि नथिंग टू वेयर यार। और अभी दोहा मॉल्स का जो एटमॉस्फेयर है वो भी फुल फेस्टिव हो गया है। मतलब मैं जिसकी स्टोरी देखती हूँ एवरीवेयर इज सेल, पार्किंग हंट अलग चैलेंज है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिसर्च बोलती है कि फेस्टिव शॉपिंग इमोशनल ना एक्साइटमेंट क्रिएट करती है, लोग नए कपड़ों को फ्रेश स्टार्ट फीलिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग तो डिजास्टर हो ही जाता है। मतलब पिछले कुछ एक महीने में मैंने 2-3 बार ऑनलाइन शॉपिंग की है एंड एक भी चीज़ इतनी अच्छी नहीं आई कि मुझे ऐसा लगे कि यार ये तो मज़ा ही आ गया। सो फोटो में लग्जरी आउटफिट लगता है लेकिन रियलिटी में एकदम टेबल क्लॉथ जैसा कपड़ा आता है। सो आई विल से कि जाइए मॉल्स में, एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए, और अपने फेवरेट वंस के लिए गिफ्ट्स भी ले लीजिए क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो ये फैमिली मैचिंग आउटफिट का भी प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा रियल हो गया है। कोई सेज ग्रीन पहनना चाहता है तो कोई पेस्टल ब्लू, और एक कज़न ब्लैक पहन के आ जाता है तो ऐसा लगता है कि यार एकदम ही डिफरेंट हो गया। सो आई विल से कि पहले से ही अपना प्लान बना लीजिए कि किसको क्या पहनना है, और सुनते रहिए रेडियो ऑलिवर, बताइए मुझे कि आपकी शॉपिंग हो गई है या अभी भी बाकी है। 3311063 is my number. Stay tuned. Jio. Bindaas.

सो सेल देखकर क्या होता है ना कि लॉजिकल इंसान भी इमोशनल हो जाता है. सो शॉपिंग मोस्टली नीड बेस्ड नहीं होती, इमोशन बेस्ड होती है. ब्रांड साइकोलॉजिकली ऐसा ट्रिक यूज करते हैं ना कि ओनली टुडे, लिमिटेड स्टॉक, फ्लैश सेल, और ब्रेन सडनली पैनिक बाइंग मोड में चला जाता है. और अभी तो देखो फेस्टिव मूड ऑलरेडी चल रहा है, ईद आ रही है, लॉन्ग वीकेंड है, एवरीबॉडी इज यू नो ट्राइंग कि यार कुछ पहले से ही लेकर रख लें सो दैट वीकेंड पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगहों पर आपको जाकर शॉपिंग ना करनी पड़े, लंबी लंबी लाइन्स में ना लगना पड़े. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो फनीएस्ट पार्ट क्या है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो पार्सल आने के बाद एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, स्पेशली ईद सेल सीजन में. डिस्काउंट्स हैं तो लेना ही चाहिए, इवन इफ नीडेड नहीं भी है तो स्मार्ट स्पेंडिंग का रियल हैक पता है क्या आपको, 24 आवर रूल. आज पसंद आया कल भी उतना ही पसंद आएगा, देन वी विल बाय. मतलब आप 24 घंटे के लिए रुक जाइए. पर होता क्या है ना, मैंने ये 24 घंटे वाला रूल 2-3 बार फॉलो किया है, पर मैं जब दोबारा लेने जाती हूँ तो वो पीस मुझे मिलता ही नहीं है, एंड फिर मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है. सो आप भी अपनी शॉपिंग को थोड़ा सा स्मार्टली करने की कोशिश कीजिएगा. बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब शॉपिंग करनी है क्योंकि फेस्टिव मोड आ गया है और इतनी सारी छुट्टियाँ हैं, सबको कुछ ना कुछ खरीदने की ज़रूरत है. थोड़ा सा मतलब लॉजिकली भी सोचिएगा शॉपिंग करने से पहले. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू. फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड. दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर. सुख वाकिफ अलखोर.

0: सो आजकल लोग ना मतलब ब्लू टिक ऑफ करते हैं, लास्ट सीन ऑफ कर देते हैं और सडनली इनविजिबल क्यों हो रहे हैं, मतलब इसके पीछे भी भाई एक रीजन है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है यस लाइफ मस्त है. आजकल का बिगेस्ट लग्जरी क्या है? बीइंग अनअवेलेबल. मतलब हर किसी के लिए नहीं पर काफी सारे लोगों के लिए. लास्ट सीन हाइड कर देना, रीड जो रिसिप्ट होती है उसको ऑफ करना और नोटिफिकेशन को म्यूट पे डालना. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे आसपास हैं जिन्होंने वो ब्लू टिक तो ऑफ ही कर रखा है. मतलब उनको चाहिए ही नहीं कि आप उनको पता चले कि आपने उनका मैसेज पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है. क्यों? क्योंकि ऑलवेज अवेलेबल जो है वो कल्चर मेंटली एग्जॉस्टिंग हो गया है. अर्लियर लेट रिप्लाई वॉज नॉर्मल. अब 10 मिनट रिप्लाई लेट हो जाए तो सब ठीक है ना, क्या हुआ, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, बस ऐसे मैसेजेस आने लग जाते हैं. सो कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी एंजाइटी क्रिएट कर सकती है. ब्रेन को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है हर चीज के लिए. कभी कभी तो आपके पास ऐसे सवाल आते हैं किसी के कि आपको लगता है मैं इसका क्या जवाब दूं, और फिर आपको चाहिए थोड़ा सा टाइम, और वो ब्लू टिक होने के बाद आपके पास वो टाइम बचता नहीं है. सो सोशल मीडिया ने एक्सेसिबिलिटी को प्रेशर बना दिया है. कभी कभी लोग इग्नोर नहीं कर रहे होते हैं, बस थोड़ा सा मेंटली टायर्ड होते हैं, और इनविजिबल रहना भी पीस लगता है. इसीलिए अगर किसी का मैसेज नहीं आ रहा है फॉर सम टाइम तो थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कीजिए. सुबह मैसेज किया है तो शाम तक का इंतजार तो बहुत ही नॉर्मल है, और उसके बाद फिर एक मैसेज करके या कॉल करके ही पूछ लीजिए कि भाई क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके. पर ऐसे बार बार किसी को मैसेज करना इज नॉट गुड. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

देखो भाई, बहुत सारी छुट्टियां आपको मिल गई है, मुझे पता है बहुत लॉन्ग वीकेंड मिल गया है आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वेकेशंस पे जाना ही ब्रेक का मतलब होता है। कभी कभी इंसान को बीच में ना बस थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत होती है, थोड़ा सा आराम करने की जरूरत होती है, और आजकल लोग फिजिकली कम मेंटली ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, ये तो हम सबको पता ही है। सो इतना सारा ऑफिस का काम प्रेशर, फिर इतने सारे टारगेट्स, और उनको पूरा करने के बाद अगर आपको अच्छी खासी छुट्टियां मिली हैं तो उन्हें अच्छे से यूज कीजिए। यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो ब्रेन ना इतना ज्यादा ओवरलोड फील कर चुका है कि अब उसे चाहिए थोड़ा सा पीस। इसीलिए लोग बोलते हैं कि तुम तो एसी में बैठते हो, कैसे थक गए। भाई थक जाते हैं हम क्या ही बताएं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वेकेशंस के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत है या फिर किसी बड़े से स्टेकेशन की जरूरत है। नो, नॉट एट ऑल। आपको अच्छी सी चाय, थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक, एक अच्छी सी इवनिंग कॉन्वर्सेशन, बस इन सब चीजों की जरूरत है। दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारने की जरूरत है। सब कुछ एकदम वेकेशन जैसा फील होता है, बस और कुछ नहीं चाहिए होता। सो इस लॉन्ग वीकेंड पे आपके क्या प्लान्स हैं? क्या कोई फैमिली से यहाँ पर आ रहा है या फिर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो? बताओ मुझे 3311063 पर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

पहुंच गए हम वहां पर जहां पर मैं आपसे हर दिन कहती हूँ कि दिस इज माई लास्ट थॉट ऑफ द डे। सो हम हैप्पीनेस को बहुत बड़ा इमेजिन करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े वेकेशंस, परफेक्ट लाइफ, स्टेकेशन, पर नहीं, जो रियल हैप्पीनेस है वो बहुत छोटी होती है। अच्छा, यू नो, अच्छी एक डीप स्लीप, फैमिली डिनर, या फिर सेफ होम, गुड हेल्थ, बस यही सब चाहिए होता है। और इतनी लंबी छुट्टियां मिल रही हैं आपको, तो आई एम श्योर आप भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होंगे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो बेसिकली ईद की छुट्टियां जो है वो लग चुकी हैं, इतनी सारी यू नो लॉन्ग वीकेंड मिल गया है आपको, इतनी सारी छुट्टियां मिल गई हैं। सो यहां पर मैं तो आपसे बस यही कहूंगी कि अगर आपने अभी तक अपनी जो छुट्टियां हैं वो प्लान नहीं की हैं तो फटाफट से कर लीजिए। आई एम श्योर आप ऑलरेडी यू नो अभी इस मोड पे होगे कि यार कहाँ जाएं, क्या क्या प्लान करें, अगर आप कतर में ही हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बता चुकी हूँ। बाय द वे, कल मैंने अपना वो देसी ब्लिंक कंप्लीट किया, मतलब इट वॉज नॉट बिंज वॉच, मैंने उसको पूरा 3 दिन में ख़त्म किया है, लाइक 2 एपिसोड्स पर डे टाइप। बट येस, इट वॉज सच अ इंटरटेनिंग काइंड ऑफ सीरीज, क्योंकि बहुत मज़ा आया, कुछ भी नेगेटिव नहीं था, लोगों को पसंद नहीं आ रही। जब भी आप उसके रिव्यूज देखोगे तो आपको बहुत कुछ नेगेटिव देखने को मिलेगा, बट यार आई लाइक इट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई देखना चाहिए कि ये जो इतने अल्ट्रा रिच लोग हैं आखिर इनकी लाइफस्टाइल में होता क्या है। बट व्हेन यू विल सी आपको लगेगा कि नहीं यार, अपन बढ़िया है, अपने पास सब कुछ है। सो कभी कभी ऐसी सीरीज भी देख लेना चाहिए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ नाउ, आई हैव टू से कि मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। जियो, बिंदास।

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Geo Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: ओलिव म्यूजिक मैराथन. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने.

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
2: Eid Mubarak.
3: Taufik chacha, Eid Mubarak.
4: Aap?
3: Chacha, main, Ibrahim.
2: Har Jumirat aata,
3: tumhari biryani khane ko.
4: Arre miyan, Taufik chacha ko kuch bhi yaad nahi. Tab aap bhool gaye. Biryani bhi.
5: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
6: ए, हलो हलो, तौफिक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां।
7: क्यों चचा?
8: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
9: एक मिनट रुको। बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांट।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में
7: मॉर्निंग से नाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: काविश और कुरातलन बलोच की आवाज में फासले, ब्यूटीफुल ट्रैक और लिरिक्स ऐसे है ना जो दिल के ऐसे ऐसे तार छेड़ देता है कि फिर सैड हो जाते हैं यार। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिवर 6.3 एफएम, तनिषा आपके साथ, ऑलिवर रिचार्ज लेकर आ गई हूं मैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान। सैड वैड होने वाली कोई बात नहीं है, छुट्टियां आने वाली है ईद की यार, और अभी मैं ऐसे बढ़िया बढ़िया गाने आपके लिए लेकर आई हूँ, आप सैड कैसे रह सकते हो। हाँ जी, बुलिया वे और फिर अरिजीत सिंह भी इंतजार कर रहे हैं।
1: पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, जाके भी पकड़ पाऊं ना।
0: एंड देन दिस ब्यूटीफुल वन, थोड़ा सा 90s में जाना भी तो बनता है ना।

बनता है तो बनने दो, स्ट्रेस नहीं लेने का, ठीक है आप चिल करो बस, अपना ख्याल रखो और मस्त रहो क्योंकि आप इंपॉर्टेंट हो मेरी जान। फटाफट से बताओ मुझे 3311063 पर मैसेज करके कि कैसा जा रहा है आज का दिन, और कल से तो छुट्टियां लगने वाली हैं तो खुश तो बहुत होगे तुम, हैं क्या प्लान्स कर रखे हैं इन ये जो ऑफ मिला है, हॉलीडे मिला है ईद का इसमें, और सब कुछ जाना चाहती हूँ विस्तार से मैं। शॉपिंग शॉपिंग होगी कि नहीं, कपड़े कपड़े हो गए सेट बताइए जरा 3311063 पर, और सुन रहे हैं रेडियो ऑल ऑफ जियो, बिंदास मेरी जान।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio Olive,
1: I'm a number one. Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव. राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: Tanisha.
1: Tanisha. अरिजीत सिंह की आवाज में बहुत सुंदर गाना फ्रॉम द मूवी मॉनसून किया है, मैं तो नाम ही भूल गई हूँ इसका। हाँ, तो आप सुन रहे हैं, तनिषा है आपके साथ, ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। एंड आई रेड समथिंग रियली अमेजिंग एंड इट एक्चुअली स्टक अ कॉर्ड विद मी, सो आई वाज लाइक यार ये तो शेयर करना बनता है। यू नो, हम बहुत ज़्यादा बॉदर कर जाते हैं जब किसी का बिहेवियर हमारी तरफ ऑफ होता है या फिर कोई हम पे स्नैप कर जाता है फॉर नो रीज़न। यू जस्ट लाइक went to office, you know, and a colleague of yours who's like close to you, who is a friend or something, and wo aap pe snap kar jaye for some reason, to dimag mein ye tha ki yaar isne mere sath aisa kyu kara, kya maine kuch kiya hai, kya main itni buri hu? Agar aap mere type ke overthinking wale insaan hain to you must go through all this train of thoughts, you know, aur itni badi badi cheeze soch lete ho jo us insaan ke dimag mein bhi nahi hogi, but kuch aur hua hoga maybe, यू नो, वो कहीं और से निकल के आ रहा होगा। कितनी बार हमने भी ये किया है ना, हम अपने लोगों पर बिना वजह जला देते हैं क्योंकि उसके कुछ देर पहले कुछ तो बात हुई है जिसने हमें बॉदर किया है, जो हमारे दिमाग में चल रही है कॉन्स्टेंटली, एंड वी जस्ट स्नैप्ड, यू नो, हमने चला दिया या फिर ऐसा कुछ रूड रिस्पॉन्स दे दिया। तो इट डजंट मीन कि सामने वाला बंदा आपको पसंद नहीं है, वो तो बस उस मोमेंट की वजह से था, राइट? सो ऐसे ही दूसरों को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देने की ज़रूरत है हमें, हर चीज़ को ऐसे दिल से ले लेने की ज़रूरत नहीं है। चिल करने का बाबा, इतना सोचोगे ना तो फिर रोज़ बैठ के सोचते ही रह जाओगे, ज़िंदगी जीने का वक्त नहीं मिलेगा। सो इग्नोर करो, दो कानों का इस्तेमाल करने का ऐसे टाइम पे, एक से सुनने का दूसरे से निकाल देने का।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर और भाई Al Batin Star जो है rise हो चुका है आज से and it marks the start of 13 days of heat, dust and strong winds. तो जरा अपना ख्याल रखिएगा ऐसे you know peak summer का जो वो 40 days period है वो start हो चुका है और अब आपने अपना वैसे in general भी you know carry water with you, अपने आपको hydrated रखिए, ऐसे fruits खाइए जिसमें water contains ज़्यादा हो और sunscreen भर भर के लगा लो. Also check out करो कि वो sunscreen actually working for your skin or not, क्योंकि just sunscreen के नाम पे हम अच्छे-अच्छे brands तो उठा लेते हैं but somehow it doesn't go with every skin, right? So वो चीज़ का ख्याल रखना भी बहुत important है मेरी जान, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि आप important हो, आपको कोई परेशानी ना हो जाए, बस यही चाहती हूँ मैं जीवन में, समझ रहे हो बात को जी. Sending an amazing track your way, stay tuned, Andrew Bindas.

0: Tanisha.
1: तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर. और अभी चार चल रहे हैं यहाँ पर. एंड यू नो टुमारो वी आर गोइंग टू हैव लंच टुगेदर, आप और हम, आपकी फैमिली और ऑलिव की फैमिली साथ में. ईद मजलिस सीजन 5 के लंच पे जाने वाली है कल. तो अभी भी आपके पास मौका है, रजिस्टर योरसेल्फ. आप अपनी फैमिली के साथ वहां पर आ सकते हैं. आपने बस रजिस्टर करने के लिए इतना करना है, EM स्पेस आपका नाम और लिख के भेज दीजिए 3311063 पर. EM स्पेस आपका नाम और 3311063 पर भेज दीजिए. आज शाम तक आपको कन्फर्मेशन कॉल आ जाएगी एंड यू विल नो द टाइम एंड प्लेस कहां पर आपको आना है आपकी फैमिली के साथ. वी आर ईगर टू मीट यू. एंड ईद का सेलिब्रेशन तो बनता है यार, आपके बिना तो अधूरा सा महसूस होगा. सो दिस इज अ मस्ट. सो फटाफट से आओ, रजिस्टर करो, इंतजार कर रही हूँ मैं यहाँ पे. और सुनते रहो रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम शाइन स्मार्टर दिस सीजन विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइन सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 million riyals dream बिगर

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
2: Eid Mubarak.
3: Rafiq chacha, Eid Mubarak.
4: Aap?
3: Chacha, main, Ibrahim. Har jumme raat aata tumhari biryani khane ko.
4: Are miyan, Tawfiq chacha ko kuch bhi yaad nahi. Tab aap bhool gaye. बिरयानी भी
5: एक काम करते हैं इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं
6: ए हेलो हेलो तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां क्यों चचा
7: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ
8: एक मिनट रुको बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में
7: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
8: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूं जैकी श्रॉफ
9: रेडियो 106.3
8: जे ओबिंदास
10: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
11: रेडियो ऑलिव हमें नंबर वन
12: हमने लगा और हो जा रिचार्ज
13: ऑलिव रिचार्ज
14: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
15: In association with
16: Homesar Us, we complete your home. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
17: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Danisha.
1: रेखा भारद्वाज और सुखविंदर सिंह की आवाज में पान की दुकान और रोमियो से ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और एक बहुत प्यारा वर्ड लेकर आई हूँ जी मैं
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी
1: एंड दिस थिंग वी ऑल डू चाहते ना चाहते ये होता है हमसे बताओ मुझे कितनी बार या फिर हर दिन में कितनी बार करते हो ये चीज कोई कॉन्वर्सेशन अपने दिमाग में फुल ऐसे चल रही होती है कि यू नो उसने ये बोला फिर मैं ये बोल दूंगी फिर वो ये बोलेगा और फिर मैं ये बोल दूंगी फिर ऐसे में इसको एंड करूंगी यू नो फुल कॉन्वर्सेशन ऐसे रेडी होता है दिमाग में वेदर इट एक्चुअली हैपन्स और नॉट या फिर कई बार ऐसे होता है कि हमें रिस्पॉन्सेस काफी वक्त के बाद आते हैं लाइक इवन नाउ यू नो कि कॉलेज में कुछ चीज हुई मुझे उसका अभी अभी याद आ रहा है कि यार मैं तो उसको ये जवाब देके चुप करा सकती थी पर उस टाइम पे वो आया नहीं सो यू नो क्रिएटिंग ऑल दीज सिनेरियोज एंड कॉन्वर्सेशंस इन योर हेड देयर इज अ नेम फॉर दिस थिंग व्हिच वी ऑल डू एंड इट इज कॉल्ड जोस्का JOUSKA हाँ जी एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ इस चीज को और कभी कभी ये मुझे बॉदर भी करता है क्योंकि नेगेटिव साइड पे पहुंच जाते हो तो दिक्कत तो होती है बेटा सो हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस ऑन डे टू डे बेसिस ये जानना चाहूंगी मैं 3311 1063 पर मैसेज कीजिए और बताइए और सुनिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है
3: जबरदस्त है

0: Tanisha.
1: Tanisha. क्योंकि की आवाज में वो लम्हे मूवी से क्या मुझे प्यार है, अगर है तो एंजॉय करो यार, इतना सोचते नहीं होते, बहुत सुंदर फीलिंग होती है यार। You are listening to Radio 106.3 FM, Tanisha आपके साथ, ऑल ओवर रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, और बहुत कम वक्त बचा है क्योंकि कल, जी हाँ, कल दोपहर हम साथ में लंच करने वाले हैं, ईद मजलिस सीजन 5 कल होने वाला है, एंड आप उसका हिस्सा बन सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ इस सेलिब्रेशन में, ईद के सेलिब्रेशन में ऑलिव की फैमिली के साथ बैठ के लंच करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें, मस्ती, गेम्स, एवरीथिंग विल बी देयर। तो फटाफट से खुद को रजिस्टर कीजिए, 3311 1063 इज द नंबर, आपने लिखना है EM स्पेस अपना नाम और भेज दीजिए फटाफट से, आज शाम तक आपको कॉल आ जाएगी कंफर्मेशन की कि कहाँ आना है, कब आना है, कैसे, एंड एवरीथिंग। बस अभी आपका काम इतना है कि आप रजिस्टर कर दो, यहाँ मैं कर रही हूँ इंतजार आपके मैसेज का। काफी क्रेजी तरीके से वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे ये गाना, हर चौथी रील यही गाने पे चल रही थी, मैंने कोशिश की थी सीखने की पर नहीं हो पाया, तो हम अपना वाला बराती डांस ही कर लेंगे, ठीक है, स्टे ट्यून्ड।

0: तनिषा तनिषा
1: पलक तक नहीं चलना है, अभी आप बने रहिए बस मेरे साथ, जहां भी जा रहे हैं मैं आपके साथ चलूंगी, ठीक है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ ऑल रिचार्ज चल रहा है यहां पर। वैकी विजडम में आज हम बात करेंगे टैम्पा फ्लोरिडा की। वहाँ पे कुछ बहुत अमेजिंग हो रहा है टू कर्ब द प्लास्टिक पोल्यूशन, एंड राइट नाउ एनवायरमेंट में ये वाला स्टेप लेने की हम सबको बहुत ज़रूरत है। आई वुड से ऑल द कंट्रीज शुड यू नो चेक दिस आउट, एंड ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए, बहुत बढ़िया आइडिया है। सो उन्होंने रीफिल स्टोर्स खोले हैं, एंड इस तरीके से लाइक इफ यू हैव बॉट अ सोप बॉटल, यू नो बॉडी वॉश, और इट इज़ अ डिटर्जेंट का बॉटल, और इट इज़ यू नो एनी थिंग विच कम्स इन अ लिक्विड बॉटल और वो रीफिल हो सकता है, तो वो रीफिल प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग पीपल टू बाय अनदर न्यू बॉटल व्हेन वंस फिनिश। यस, एंड दैट इज सच एन अमेजिंग आइडिया। ऑल्सो कॉस्ट भी काफ़ी उनके लिए एफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि उन्हें बॉटल का फिर पे नहीं करना पड़ रहा है, वो जो रीफिल करवा रहे हैं बस उतना ही पे करना होता है जितना उस उनका व्हाटएवर कंटेनर दे ब्रिंग उसके अंदर आ रहा है आइटम। एंड दैट इज सच अ स्मार्ट वे टू कर्ब द पोल्यूशन, यू नो ऑल्सो इफेक्टिव भी है और फाइनेंशियली भी काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगा लोगों के लिए। एंड आई थिंक ऑल द अदर कंट्रीज जो अभी तक नहीं कर रही हैं ये यूज़ करना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक इज रूइनिंग द इन्वायरमेंट सो बैडली, हम रियलाइज नहीं करते। व्हेन आई गो टू सुपर मार्केट आई गेट सो अनॉयड, बिकॉज यू नो दे आर गिविंग ऑल डिफरेंट आइटम्स इन डिफरेंट कैरी बैग्स, और वो प्लास्टिक बैग्स हैं, एंड आई एम लाइक प्लीज़ आप एक में रख दो, लाइक नहीं मैम वी कॉन्ट पुट, अरे आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम प्लीज़ पुट। फिर उसके बाद मैं घर जाके पहले मम्मी जैसे करती थी ना, प्लास्टिक एक बड़े प्लास्टिक में संभाल के रखे होते हैं, मैंने भी वो करके रखा है, इतना ढेर लगा हुआ है ना मेरे पास उसका, क्या ही बताऊं मैं आपको। वेल, वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में इश्क का फीवर और रोमियो से। स्टे ट्यून्ड, रेडियो बिंदास

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: दिन कट तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में, तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम शाइन स्मार्टर दिस सीजन विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एक्सचेंज योर ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइन सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath Olive Recharge chal raha hai ab aur waqt ho chuka hai aapke mere hum sab ke favorite
2: jams. Lame jams.
1: Haan ji, lame jams. Aur aaj main poochne wali hu aapse ek riddle. So ye paheli hai ki I have a lot of keys but I cannot open any locks. What am I? So mere paas bahut sari chabiyan hain par main koi taala nahi khol sakta. मैं क्या हूँ ये आपने मुझे बताना है. 3311063 पर फटाफट से मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. आई हैव अ लॉट ऑफ कीज बट आई कैन नॉट ओपन एनी लॉक्स. What am I? सेंडिंग गिनी विद सनी टू से छाप तिलक स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास.

0: is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश.
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.
3: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑल.

0: ज्योतिका टांगरी और आतिफ असलम की आवाज में लैला मजनू से, मेरी लैला ब्यूटीफुल ट्रैक और इतने सुंदर लिरिक्स हैं इस गाने के। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम दनीशा आपके साथ, ऑल एवरी चार्ज चल रहा है यहां पर। सलीम जेम्स का आज का सवाल था, इट वाज अ रिडल बेसिकली दैट आई हैव अ लॉट ऑफ कीज बट आई कैन नॉट ओपन एनी लॉक्स, व्हाट एम आई। सो मैं तो एक ही आंसर लेके चली थी, मुझे दो मिल गए हैं यहाँ पे एंड बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया गया है, सबके जवाब सही है मेरी जान। यस, आसमा एंड टीना, शीतल, मोहम्मद यूसुफ खान साहब एंड अर्पित, lots of people have answered and the answer is absolutely correct. So fir kis baat ka stress? Yes, either it can be piano or keyboard. Mere hisab se keyboard tha, maine piano ke bare mein socha hi nahi, but you guys are very smart. Ji ha, so thank you so much for participating in my lameness. Or those who want to join us tomorrow for Eid Majlis, hum lunch karne wale hain saath mein aur celebrate karne wale hain, you know kal se shuru ho rahi hai chuttiyan, so full celebration mode mein chale jayenge sab Eid ke, so shuruaat humne socha saath mein karte hain, milke lunch karenge, bahut sare games khelenge, baatein shaadi karenge, it will be full fun afternoon. So if you want to register yourself, aap apni family ke saath aa sakte hain 3311063 par EM space apna naam likhkar hame fatafat se bhej dijiye aur sunte rahiye Radio Olive, Jio Bindaas. Awesome. Radio Olive par aane wala gana, cool song of the hour.
1: Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai?

0: Jackman की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Only laga aur ho ja recharge.
4: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
6: In association with
7: Homes Are Us, we complete your home. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
8: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: तनिषा
1: सादिया मूवीज से आशा ताई की आवाज में बहुत ही कमाल गाना ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ओलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और मुझे याद आया सादिया मूवी में थे विवेक ओबेरॉय और विवेक ओबेरॉय से मैं पहुंची देसी ब्लिंक पे भाई साहब मैंने शुरू कर दिया वो देखना एक्साइटमेंट में आके कि भाई ये तो क्रेजी हो रहा है क्रेजी एक्चुअली क्रेजी वाला ही क्रेजी हो रहा है लाइक यू नो ऑल द रील्स आई वाज सीइंग ऑन इंस्टा एंड ट्रेलर वगैरह देखा था और मुझे खुद भी गुस्सा आया कि मैंने ऐसा अपने साथ क्यों किया मैं क्यों देख रही हूँ मैं पर मेरा आप कन्विक्शन देखो मैंने शुरू किया है उसे देखना और वो मुझे बहुत बॉदर कर रहा है बिकॉज सो मेनी थिंग्स दे आर सीइंग एंड डूइंग इट आई एम लाइक ये क्या है ये ऐसे ग्रोन अप लोग थोड़ी करते हैं ऐसी हरकतें बट आई हैव टू फिनिश इट मैं उसको अधूरा नहीं छोड़ सकती आप कन्विक्शन देख रहे हो मेरी जी हाँ सो इफ यू planning to watch it I would suggest not but if you just want to torture yourself or you know brain rot dekhna agar aapko pasand hai to you should watch Desi Bling by the way usme Vivek Oberoi ka cameo bhi hai that's why mujhe yaad aaya wo abhi and yeah pata nahi kyon aur wo tejaswi oh my god wo itna zyada koshish kar rahi hai to fit in but somewhat she is the only person who's actually giving the right reactions बट क्वाइट अनोइंग यार क्वाइट अनोइंग आपने अगर देखा है तो प्लीज़ अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा मुझसे 3311106 पर एंड सुन रहे रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास

You're listening to Radio Ala 106.3 FM, Darija aapke saath. All of you are chal rahe hain yahan par aur filhal waqt ho gaya hai mere jaane ka. Kal milenge dopahar 2 baje aur saath mein kal to hum lunch pe bhi jaane wale hain, to kafi excitement hai. If you haven't so far registered yourself, to abhi bhi waqt hai aapke paas. EM space apna naam likhe 3311063 par message kar dijiye. We will give you a call by today evening in a bit. Agar aap select hote hain to mauke pe chauka maar lo. Along with that, aap jaiye hamare social media par. RadioOlive.qa is the handle. Wahan par bhi contest chal rahe hain. So participate kijiye usme. You never know, you might be the lucky winner and win some exciting gifts. और ईद की कल से छुट्टियां लग रही हैं, तो एंजॉय कीजिएगा फुल ऑन. हम तो आपके साथ हैं ही, हमारी बातें तो चलती ही रहने वाली हैं. तो कोई भी बात शेयर करनी हो ना, बिंदास आके आप हमें मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: This Eve, your shopping just got twice as exciting at Lulu Hypermarket because Half Payback is back.
2: Pick your festive fashion favorites, sari, churidar, footwear, ladies' bag, baby accessories and more. And when you spend 200 riyal, you get a free Lulu shopping voucher worth 100 riyal instantly.
1: That's right. Shop today, save instantly and come back for more celebrations. Lulu Hypermarket, more style, more smiles, more savings this Eve.
3: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
4: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
5: Eid Mubarak!
6: Taufik Chacha, Eid Mubarak!
5: आप
6: चचा मैं इब्राहिम हर जुम्मे रात आता हूँ तुम्हारी बिरयानी खाने को।
5: अरे मियाँ तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं तब आप भूल गए बिरयानी भी।
7: एक काम करते हैं इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
8: ए हेलो हेलो तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ क्यों चचा
9: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
10: एक मिनट रुको एक बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी जाती।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतारकदीव डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki toh baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106

गाने से शुरुआत हुई है यार शो की। सच्ची यार होता है ना आपकी लाइफ में एक इंसान कि जिसके बदलने से आपको बहुत फर्क पड़ता है और आप चाहते हो कि यार ये इंसान दुनिया बदल जाए, दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, ये इंसान जो है वो बदलना नहीं चाहिए और आपका और हमारा प्यार नहीं बदलेगा। चार घंटे अपने ये बेबी जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुके हैं। खुशबू तेरा बदन, इस गर्मियों में ये खुशबू जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है। उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको परफ्यूम लगाने की, डिओड्रेंट लगाने की आदत नहीं है तो प्लीज लगा लीजिए, क्योंकि आपकी वजह से बाकी लोग सफर करते हैं यार। फिलहाल के लिए जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है, सिमरन कौर आ चुकी है और आप लोगों की ईद की छुट्टियां, भाई साहब लोग इतने ज्यादा खुश है। अभी अभी मुझे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया एंड शी सेड कि मेरी तो छुट्टी है यार कल से। आई एम लाइक आई एम जेलस बट दैट्स ओके यार, आप लोगों के साथ हूं मैं और अगर आप इस ईद पे अकेले हैं तो आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए हम हैं यार, आप टेंशन मत लीजिए। बाय द वे आपकी छुट्टियां अनाउंस हो गई हैं, क्या सीन है आपका बताइएगा मुझे। आपके गुड इवनिंग।

0: रेडियो ऑन योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3.

0: आते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Supported by Homes Are Us. We complete your

0: ओके सिमरन नो हो हो हांजी लेकिन अगर आपकी ईद की कोई प्लानिंग नहीं है तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए हर बार की तरह इस बार भी जो है वो प्लान सेट करके रखा हुआ है ईद का. सो ईद का प्लान कुछ इस तरह से है कि आप हमारे साथ कल करने वाले हैं लंच, और वो लंच बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि लंच के साथ साथ ईद की गिफ्ट्स भी होने वाली हैं आप लोगों के लिए. सो अगर आप ये लंच अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हमको ऑलरेडी आ चुके हैं तो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं अभी हम, तो अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है ईद मजलिस के लिए, सो फटाफट से आपको टाइप करना है EM और फिर लिखना है अपना नाम और भेज दीजिए 3311063 पर. आपके साथ और कितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो आना चाहते हैं वो भी काउंट जो है वो आप लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा. काउंट कितना रहेगा कि आपके घर पे कितने लोग हैं जो आना चाहते हैं साथ में. EM आपका नाम, फैमिली काउंट और 3311063 पे भेज दो यार. आपके साथ
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: This Eve, your shopping just got twice as exciting at Lulu Hypermarket because Half Payback is back.
4: Pick your festive fashion favorites, sari, churidar, footwear, ladies bag, baby accessories and more. And when you spend 200 riyal, you get a free Lulu shopping voucher worth 100 riyal instantly.
3: That's right. Shop today, save instantly and come back for more celebrations. Lulu Hypermarket, more style, more smiles, more savings this Eve.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
6: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes Are Us. We complete your home.

0: रियलाइज करती हूँ यार ये गाने कितने खूबसूरत बने हुए हैं यार, क्या वाइब है यार इस गाने में, क्या तसल्ली से इस गाने को गा दिया यार। कांटे फिल्म से आप ये गाना सुन रहे हैं। सलमान खान ने अपना अकाउंट जो है वो इंस्टाग्राम का डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि थोड़े दिन पहले उन्होंने कुछ पोस्ट डाले थे जिसमें वो मीडिया वाले पे भड़क रहे थे और बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आ रहा था। तो भाई जब मैंने ये न्यूज देखी हम लाइक सच्ची में डीएक्टिवेट कर दिया, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ था। जो पर सोशल मीडिया पे आप चीज देखते हो ना उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उस न्यूज को देखने के बाद मैं सलमान खान के इंस्टाग्राम अकाउंट पे गई और सलमान खान ने कोई डीएक्टिवेट नहीं किया हुआ था, वो वैसा ही अकाउंट था जैसा था। कभी कभी न्यूज ऐसी आ जाती है कि लोग जो है वो उस चीज पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आप वेरीफाई करिए सिमरन कौर की तरह। सलमान खान घबराते तो हैं प्यार मोहब्बत से।
1: तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए,
0: और कोई चाहिए भी नहीं है आपको, है ना। बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को वो भी जलस हो जाती है ना यार कि अगर आपको लाइफ में सिमरन कौर का शो चल रहा है तो और क्यों चाहिए यार कोई। सलमान खान के बारे में बात हो रही है तो फिर ये गाना तो बनता है यार, एंजॉय करिए एंड वापस लौट रही हूँ और भी बातें करते हैं यार।

0: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
1: आप
2: चचा मैं इब्राहिम
1: हर जुमेरात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को
2: अरे मियां तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं तब आप भूल गए बिरयानी भी
3: एक काम करते हैं इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं
4: ए हेलो हेलो तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां क्यों चचा
5: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ
6: एक मिनट रुको एक बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेयर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट, अब बिन उमरान में।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ
9: Zabardast evening, make you drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Supported by Homes Are Us. We complete your home.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो।

0: ਵੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ?
1: ਮੌਸਮ
0: क्या ही बताएं बहन जी, आपको तो पता ही है 33 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 32 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम जो है वो आज का 29 डिग्री सेल्सियस है। विंड जो है 14 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है एंड ह्यूमिडिटी जो है वो 40% है। कल से ह्यूमिडिटी बढ़ गई है एंड आने वाले टाइम पे अभी जो है वो 40s और मिड 40s जो है वो टेम्परेचर जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। सो या ये है अब तक के मौसम के हाल। तो अपने दिल के हाल अगर आप बताना चाहेंगे, ऑफकोर्स 9 बजे तक आपके पास चांस होता है, बता दिया करो यार। ऑलिव गुर्गे तेरी जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency. ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ।
1: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनिश।
0: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप।
1: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

प्यार है। गाने को गाया यार, बस थोड़ी देर में सारे गाने तो आप सुनने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ थैंक यू सो मच यार, आप सब इतने सारे मैसेजेस जो है वो कर रहे हो, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और क्या

एडजस्टमेंट, अब ये सारी चीजें जो है अलग अलग फेज जो है इस फिल्म में दिखाए गए, एंड आई लव्ड इट यार। अगर आपको इस तरह की थोड़ी सी लाइट फिल्में, थोड़ी इमोशनल फिल्में अच्छी लगती हैं और थोड़ा सा ऐसा रॉ जो था यू नो जो भी सारा प्लॉट था, ऐसी फिल्में अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चांद मेरा दिल आप एक बार जो है वो जरूर देख लीजिएगा। आई लव्ड इट यार।

0: Legend Radio Station, Radio Olive 106.3 FM.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. Louis Philippe and Van Heusen स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
0: Louis Philippe and Van Heusen की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश.
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद Van Heusen and Louis Philippe.
0: Visit Louis Philippe and Van Heusen and stores in Old Airport Road or buy a spectacular festival offer.
3: Hi everyone, this is Benny Deol here. Olive Radio 106.3. Jiyo Bindas.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network. Radio Olive,
5: I'm number one. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Supported by Homes Are Us. We complete your home.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
4: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
5: Eid Mubarak.
6: Taufik chacha, Eid Mubarak.
7: Aap?
6: Chacha. मैं इब्राहिम
7: हर जुम्मे रात आता हूँ
6: तुम्हारी बिरयानी खाने को.
7: अरे मियाँ तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं तब आप भूल गए बिरयानी भी.
8: एक काम करते हैं इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
9: ए, हलो हलो तौफीक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ.
7: क्यों चाचा?
10: सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
11: एक मिनट रुको. एक बात शायद आप भूल गए बेटा. ईद की बिरयानी खुद से पहले दूर

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki to baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझिकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ
9: Zabardast evening. Make you drive golden with.
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Supported by Homes Are Us. We complete.

यार प्यारा गाना है यार, बाबुल सुप्रियो अलका याग्निक की आवाज, मुझे कुछ कहने से, करीना कपूर के साथ तुषार, अमेजिंग। लेकिन इस कमाल की चीज से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। बहुत सारे लोग अगर एक्सपेरिमेंटल रहेंगे तो इस चीज के लिए कर सकते हैं। चाइना ने एक एआई रोबोट बार्बर कियोस्क जो है वो लॉन्च किए हैं, जिसमें ये एआई रोबोट जो बार्बर कियोस्क है, जिसमें कोई बंदा नहीं है। अगर आपको अपना हेयर कट करवाना है तो आप इस कियोस्क के अंदर जा सकते हो, एआई आपका हेयर कट जो है वो करता है। वो मेरे लिए काफी ज्यादा स्कैरी होगा अगर मैं आपको बोलूं कि आप ऐसे कियोस्क में जाके बैठ जाओ जहां पर कोई बंदा नहीं है, लेकिन एआई जो रोबोट है वो आपका बार्बर बनेगा, वो आपका हेयर कट करने वाला है। भाई साहब, लोग ये कॉन्फिडेंस भी दिखा रहे हैं। इसमें बहुत ही चीप चीप सेशंस हैं जहां पर आप जा सकते हैं और अपना हेयर कट करवा सकते हैं। भाई इसके लिए देखो, एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा इंसान को चाहिए, क्योंकि हर कोई ये एक्सपेरिमेंट नहीं करवा सकता। भाई क्या पता लगे, या ये रिबोट का दिमाग घूमे, वो कुछ भी कर दे यार, फिर क्या होगा हमारा। भूल तो रोबोट से भी हो सकती है। आप मुझे बताइए, क्या आप यहाँ पे हेयर कट करवाना चाहेंगे, या फिर आपको भाई नहीं, हमको हमारा बार्बर ही चाहिए, हमारे तरीके से हमारे बाल काटे वो।

हां जी कबूल कर लो ईद मजलिस का हमारा इनवाइट भी आप जो है वो कबूल कर लो। मैं कहती सुनियो कितना देखिए हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ। ईद का इनवाइट जो है हम आपको दे रहे हैं और कल हम हमारे कुछ लकी लिसनर्स के साथ करने वाले हैं ईद का लंच, और इसके लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप रजिस्टर करवा लीजिए क्योंकि लंच के साथ साथ गिफ्ट्स भी जीतने का मौका आप लोगों को मिलने वाला है ईद के टाइम पे। तोहफे तो जरूर होते हैं, बस कुछ लकी लिसनर्स जो है हमारे साथ जाने वाले हैं। बट आपको क्या करना है, आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना है, तो जो लकी रहेंगे हम उनको कॉल कर देंगे और कल वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इस ईद के लंच को। सो आपको लिखना है EM यानी कि ईद मजलिस, EM के बाद लिखना है अपना नाम और कितने फैमिली मेंबर जो है वो आपकी घर से होने वाले हैं, सो वो भी आपने भेज देना है 3311063 पर। होपफुली आपका नाम सेलेक्ट हो। और ये वाला गाना यार कितना वायरल हो रहा है ना।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
4: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
5: द बिग Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
6: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
7: Jackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.

कम्स टू मैरिज पार्टी है ना, हम सब लोग जो है वो चाहते हैं कि शादी जो है वो बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, पार्टी जो है वो बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादातर जो है वो सिर्फ लड़कियां जो है वो बोलती है, क्योंकि ड्रीम वेडिंग, ड्रीम लहंगा, ड्रीम ये चीज, ड्रीम वो चीज। लेकिन एक रिसर्च अब ये कहती है कि इसमें लड़के इंटरेस्टेड नहीं होते। 90% ऑफ मेन आर परफेक्टली ओके विद नॉट हैविंग अ बिग वेडिंग और अ वेडिंग पार्टी एट ऑल। ये चीज के बारे में मुझे नहीं पता था यार, मुझे लगता है कि लड़कियों की तरह लड़के भी एक्साइटेड रहते हैं कि भाई एकदम हाई फाई जो है वो शादी होनी चाहिए, हाई फाई पार्टी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि लड़के तब तक जो है वो बिग पार्टी या बिग शादी जो है वो नहीं चाहते हैं, तब तक जब तक उनका खर्चा हो रहा है तब तक उनको नहीं चाहिए, जब कोई और खर्चा कर रहा है तो होना चाहिए।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa. Sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
1: Hi guys, this is Abar Fethi Khurana aur aap mujhe sun rahe ho Radio Olive.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट योर

0: जी मैं गरी सोने की तदगी हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। अब आप लोग इतना सारा प्यार करते हो मुझसे तो आपसे भी प्यार है, तो मैं जो चीजें बढ़िया हैं आप लोगों के लिए वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। शाइन स्मार्टर दिस सीजन विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। आप अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे आपने जहां से भी मर्जी खरीदी हो नए नए डिजाइन के साथ एक्सचेंज कर लो। सिर्फ मेकिंग चार्जेस जो है आपको पे करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ बढ़िया न्यूज ये है कि इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, जिसकी वजह से आप 15% गोल्ड पर सेव कर सकते हैं इन कतर। सो मेक श्योर कि आप मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के शोरूम आप तो ईद की छुट्टियां विजिट कर ही लीजिएगा, ठीक है। कोई और आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर। सारा कंफ्यूजन वैसे मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के शोरूम जाएंगे ना तो वहां पे सॉर्ट हो जाएगा। रेडियो ऑलिव कोर के जरिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ
3: Zabardast evening. Make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: Adnan Sami की आवाज ऑसम. पानी के छींटे कैसे पड़ते हैं यार, सही है साउंड है ना. बहुत सारे लोग ना बारिश वाला साउंड चला के सोते हैं और लोगों को बहुत ऑड लगता है. मेरा भाई खुद का करता है. सोने से पहले उसके फोन पे वो लगा रहता है, वो जिससे पानी की बारिश की आवाज जो है वो आती रहती है, वो फिर सोता है यार. 7:30 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है. थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस के लिए. चलिए एक नया वर्ड जो है वो सीखते हैं आपके लिए. आपने बहुत सारे जेंजीज को या फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को एक वर्ड को कहते हुए सुना होगा, बैडी. मैं तो बैडी बनूंगी. जी हाँ, बैडी एक ऐसी लड़की को बोलते हैं जो कि कॉन्फिडेंट है, स्टाइलिश है, अट्रैक्टिव है. सो क्या होता है कि कभी कभी जब आपका डाउनफॉल जो है वो लाइफ में आता है तो आपका वो जो बैडी बना है वो चला जाता है, लेकिन लाइफ को बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए आपको बैडी जो है वो बनना पड़ता है. क्योंकि जो लोग बैडी हैं अपनी लाइफ में वही लाइफ में सर्वाइव कर पाएंगे. क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टाइल नहीं है और यू नो अट्रैक्टिव नहीं हो आप, तो फिर कैसी चलेगी यार जिंदगी. तो बैडी बनना लाइफ में, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियों, पता नहीं लड़कों को क्या बोलेंगे, बट यस हर किसी को लाइफ में बैडी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, तो जरूरी है लाइफ में मुस्कुराना भी. ये जो आपने गोभी जैसी शक्ल बना रखी है ना, वो मत बनाइए यार.
1: धीरे धीरे चलना, क्यों ना तुम अटकना, 16 साल है, हाय क्या ताल है.
0: एक बार तो देख पलट के, मुंडा भी कमाल है.

बड़ा ही प्यारा गाना यार, तुषार जोशी श्रेया घोषाल. आप लोगों के नाम भी लेने वाले हैं यार.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Olive, your happiness frequency.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
5: इब्राहिम भाई, ईद मुबारक.
6: ईद मुबारक.
5: रफीक चाचा, ईद मुबारक.
7: आप?
5: चाचा, मैं इब्राहिम.
6: हर जुम्मेरात आता हूँ
5: तुम्हारी बिरयानी खाने को.
7: अरे मियाँ, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
8: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
9: हेलो हेलो, तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ.
10: क्यों चचा?
11: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
12: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांट.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इरेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki toh baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझीकोड स्टार रेस्टोरेंट अब बिन उमरान में।

0: बड़े स्ट्रॉन्ग लिरिक्स हैं यार इसके। नूरा सिस्टर्स ने तो कमाल ही गा दिया यार। जब आपको वेंट आउट करना था, जब आपने दिल की बातें बतानी होती है, तो आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि बिना बोले आपको बस सुन सके। सो एक रिसर्च जो है ये कहती है कि ये जो लड़के लोग होते हैं ना, मेन कैन लिसन टू मेल फ्रेंड्स फॉर आवर्स बट सिक्स मिनट टू देयर पार्टनर्स, यानी कि वो अपने मेल फ्रेंड्स को ज्यादा देर तक सुन सकते हैं। घंटों बोलते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे, लेकिन अगर उनका पार्टनर उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो वो छह मिनट से ज्यादा उनको नहीं सुन सकते। मुझे लगता है जो आपके व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड्स, जो आपके मेल फ्रेंड्स हैं, वो आपको बिना जज किए, बिना दिमाग लगाए सुनते रहते हैं। लेकिन आपकी फीमेल फ्रेंड्स जो हैं, वो सुनने के साथ साथ आपको सजेशंस भी देती हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक्चुअली है कि लड़के लोग जो हैं वो अपने मेल फ्रेंड्स को ज़्यादा सुनते रहते हैं लेकिन अपने पार्टनर्स को ज़्यादा नहीं सुन पाते हैं। समझने वाले सुनने वाले सुनते हैं यार। थोड़ी देर में आप लोगों के लिए एक गाना आने वाला है जिसको भूल गए थे यार।
1: गुना किया दिल मैंने यार का तोड़ के।
0: किसी का भी तोड़ना चाहिए, आपका भी दिल नहीं तोड़ूंगी। आप मुझे सुनते हो यार हर रोज चार घंटे, तो नेम गेम लेके आ रही हो। थोड़ी देर में तैयार हो जाओ, आप लोगों के नाम लेती है यार।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस्ड फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ
3: Zabardast evening. Make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Supported by Homes R Us. We compete.

चलने से पहले नेम गेम खेल रही हूँ दोस्त। कौन कौन मुझे सुन रहा है आप अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। सिर्फ और सिर्फ आपने अपना नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। नाम पढ़ने स्टार्ट कर रही हूँ। अदील, अहमद, क्रिस, हेंजो, मरीना, जुनेद, शिवानी, थैंक यू सो मच बावा, थैंक यू सो मच नीजू, थैंक यू सो मच रुस्तम। रुस्तम का मैसेज आया है, हैप्पी बर्थडे। रुस्तम का हैप्पी वाला बर्थडे है। रुस्तम जी हैप्पी बर्थडे टू यू। गैरी, फयाज जी, दनियाल जी, श्रीनिवास, अदील, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। जाकिर जी थैंक यू सो मच। फुरकान अली जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। श्रवण कुमार जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। जुनैद जी थैंक यू सो मच। प्रेम कलवानी जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रिमजा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। शिवानी जी दैट्स ओके। बाबू जान जी थैंक यू सो मच। शैजू जी थैंक यू सो मच। अभी आप लोग थैंक यू मत लिखो, मैं आपको थैंक यू लिखने का मौका दूंगी, फिर मैं मैसेजेस में कन्फ्यूज हो जाती हूँ। रेहान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अदील जी थैंक यू सो मच। गोपी जी थैंक यू सो मच। फहीम जी थैंक यू सो मच। इरफान जी, राजीव जी, भावेश जी, डेजी जी, टीका जी, आसमा जी, आमना जी, यास्मीन, सुधीर, मोतीलाल, एंजो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड नोआ जी थैंक यू सो मच, एंड गोपी जी थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, रिपन जी थैंक यू सो मच, अब आप थैंक यू लिख सकते हैं और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना सकते हैं। बशीर जी थैंक यू सो मच।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Supported by Homes Are Us. We complete

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पांडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओनली 106.3 FM।

0: कुरितलेन बलोच,
1: इनका नाम हमेशा मेरे से गलत हो जाता है, बट मैंने बड़े आराम से बोला। हां जी मैं कहीं सुनियो कि दद की हालचाल सच्ची है गाल सिमन।

0: की छुट्टियां कल से आपकी शुरू हो गई हैं, कल फिर से फन करेंगे। अब सिमरन कौर के यहाँ से गल्ली माने का टाइम आ चुका है और अगले दो घंटे मिडनाइट लाउंज जो है वो सुनिए। लेकिन कल से जो है वो कल से लेके सैटरडे तक आप 9 से लेके देर रात तक क्लब ऑलिव सुनने वाले हैं। वीकेंड वाली वाइब और ईद की छुट्टियों की वाइब बनी रहेगी। तो अभी के लिए कल शाम को मिलते हैं 5 बजे। खंदे में रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स. दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ. विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ.
3: रफिक चाचा, ईद मुबारक.
4: आप
3: चाचा? मैं इब्राहिम.
4: हर जुमेरात आता हूँ
3: तुम्हारी बिरयानी खाने को.
5: अरे मियाँ, तौफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
6: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
7: हेलो हेलो, तौफिक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियाँ.
8: क्यों चाचा?
9: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
10: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी जाए.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इरेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
3: And Grand Mall Hypermarket.
4: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
5: Restaurant partner, Kozhikode Star Restaurant.
6: Shadi ki biryani ki toh baat hi kuch aur hai. Ab wahi authentic shadi स्टाइल बिरयानी का एक्सपीरियंस लीजिए एट कोझीकोड स्टार रेस्टोरेंट, अब बिन उमरान में।

अच्छा, कभी कभार सोचता हूँ कि अगर ये GPS मैप्स जो होते थे सारे, अगर ये सच में आपको आपकी सक्सेस तक का रास्ता दिखाते, तो सबसे ज्यादा लोग स्टार उसे ही रखते, नहीं फेवरेट लिस्ट में रखते। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, मिड नाइट लाउंज में। कैसे हैं आप भाई? देखो, सक्सेस के लिए इतने सारे रास्ते आपने ढूंढे, और खैर आपने रास्ते बनाए जहां आप GPS पे डिपेंडेंट रहते ना हर वक्त, कि यहाँ जाना है तो मैप्स ऑन कर लो, यहाँ ड्राइव करके जाना है, इवन चल के जाना है, यार उस ऑफिस तक जाना है तो, या मार्केट तक जाना है, मॉल तक जाना है तो GPS ऑन कर लेते हैं। लेकिन सोचो कुछ रास्ते तुम खुद बनाते हो, है ना, खुद फैसले लेते हो कि यार ये ऐसे सेविंग्स करूंगा तो आगे जाके इतना फायदा हो जाएगा, वो चीज आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते भी कितने सही होते हैं, सटीक होते हैं। मतलब आज देखो तुम कहाँ हो भाई, ऐसा मत सोचो कि अभी अगर हार्ड टाइम चल रहा है तो हमेशा चलेगा। रास्ते ऊपर खाड़े वाले बीच में हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शंस बीच में हो सकती हैं, लेकिन याद रखो कंस्ट्रक्शन के बाद जो बढ़िया सी सड़क बनके तैयार होगी ना।

0: अच्छा मोस्ट ऑफ द लोग के कमेंट्स होते हैं कि यार मैं स्क्रॉल करते करते इस सभा में आ गया, इस मीटिंग में आ गया, स्क्रॉल करते करते मैं लोगों की पार्टी में आ गया, स्क्रॉल करते करते मैं गवाह बन गया। बड़ा मजा आता है कमेंट्स पढ़ने में, आता है ना। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी रील पे ऐसी कोई कॉन्ट्रोवर्सी हुई हो? आप हैं वो ऐसे जिसकी रील पे लगातार लाइक्स आए और फोन की नोटिफिकेशन बजी हो? 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश। मिड नाइट लाउंज में और बारी है
1: रील वाली रियल कहानी।
0: सोचिए स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल और सामने आ जाते हैं ग्लैम फेम और फिल्टर्स के रोल। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोड प्रोफेशन क्रिकेटर्स और एक्टर्स के बाद अगर किसी का है तो वो है इन्फ्लुएंसर्स। हाँ, वही लोग जो अपने रील से दुनिया को एंटरटेन करते हैं, इंस्पायर करते हैं और कभी कभी तो बस एक ट्रांजिशन से ट्रेंड बना देते हैं। लेकिन सोचो रियल लाइफ में भी अगर हम अपने एक्शंस और काइंडनेस से लोगों को इन्फ्लुएंस करें तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगा, नहीं? तो चलिए आज ऑनलाइन नहीं लेकिन ऑफलाइन से ही आप ट्रेंड करेंगे कैसे। जब आप कुछ अच्छा करें तो उसको इवन अगर आप ऑनलाइन भी पोस्ट नहीं करते हैं, जस्ट अपनी तरफ से अच्छा करते हैं, और अगर आपको देखकर कोई और भी वही चीज सेम कॉपी करता है यार, तो उसे कॉपी कैट नहीं कहा जाता, उसे कहते हैं कि अच्छा सीखना। तो अगर आपसे आपको देखकर कोई कुछ अच्छा कर रहा है ना, समझ जाना यू आर द ट्रेंडी वन, राइट? अगर आपको ऑफिस में कोई कॉपी कर रहा है या फिर आपके ऑफिस में कोई आपके तरह बनने की कोशिश कर रहा है, बी हैप्पी ना, यू आर द वन जो ट्रेंड कर रहा है यार। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वालों की जगह बेस्ट है कि आपके सामने आपको आपके फॉलोअर्स दिख रहे हैं कि नहीं, खुश हो जाओ यार, क्योंकि आप वही इंसान है जो सबसे ज्यादा बिंदास जीते हैं। तो बिंदास लोगों के लिए बिंदास का गाना, जियो बिंदास।

अच्छा वैसे फिल्मों का जादू भी अलग ही है जनाब। आपको हंसाए तो आप हंस जाते हैं, रुलाए तो रो जाते हैं। मतलब कितने इनोसेंट होते हैं ना व्यूअर्स, उनको पता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। उन्हें पता है कि ये जो बेचारा जो गरीबी से जूझ रहा है वो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है, लेकिन फिर भी देखो हम खो जाते हैं। बिकॉज यही तो आर्ट, यही तो आर्टिस्ट का आर्ट है ना, यही तो वो कला है जिसके वजह से आपका दिल जीत पा रहा है, यही तो वो चीज़ है जिसके वजह से वो रातों रात स्टार बन पा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्मी फ्लैशबैक में राजेश खन्ना की यादों में लेजेंडरी अंदाज के बारे में। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज़, मैं हूँ आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में। और चलिए ले चलते हैं आपको

0: फ्लैशबैक।
1: तो जनाब आज का सवाल मेरा आपसे है, बताइए कौन सी फिल्म में राजेश खन्ना जी ने वो आइकॉनिक डायलॉग बोला था, पुष्पा I hate tears, एक ऐसा डायलॉग जिसने सुनते ही ऐसा लगता है ना पूरा सिनेमा स्क्रीन पे मुस्कुराने लग जाए। मतलब जब कोई रो रहा हो ना आपका अपना पसंदीदा इंसान और अगर उसकी आंखों में आंसू आ जाए और उसको हंसानो, पुष्पा I hate tears, और सामने वाली की हंसी छूट जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। तो ये डायलॉग नहीं है बॉस, ये होता है असली सुपरस्टार की छाप। तो चलिए बताइए कौन सी मूवी का ये डायलॉग है, जल्दी से इंस्टा पे जाइए, रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो करके इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश। सही जवाब बहुत लोग देंगे लेकिन सबसे पहली जो सही जवाब देगा उसके इस नाम के साथ एक बढ़िया सा गाना मैं डेडिकेट करूंगा। अभी फिलहाल इस गाने के साथ आपका दिल सुन के कहेगा जियो बिंदास।

अच्छा वैसे आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, ये एक ही चीज को कई बार ट्राई करने की कोशिश की होगी वो नहीं हुई, लेकिन कोई चीज अचानक से एक बार ट्राई करी इंस्टेंट रैंडमली करके देखी और एक बार में मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस करने के बावजूद इतनी अच्छी नहीं होती है, होता है ना ऐसा? ठीक इसी तरह से फिल्म अमर प्रेम के लेजेंडरी डायलॉग पुष्पा आई हेट टीयर्स सिर्फ एक लाइन में, एक बार में, एक टेक में राजेश खन्ना जी ने ये लाइन टेक ओवर कर दी। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश मिडनाइट लाउंज में और आप सुन रहे हैं

0: फ्लैशबैक।
1: हाँ जी, वही फिल्म जिसमें उन्होंने दिखाया था कि प्यार चाहे अधूरा हो पर जज्बात कभी अधूरे नहीं होते, और जिनसे प्यार होता ना उनकी आंखों में आंसू भी नहीं देखे जाया करते। नहीं तो भाई, सही जवाब सिंपल सा आया मेरे पास, वो फिल्म थी अमर प्रेम 1972, जहां राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने एक ऐसी केमिस्ट्री दिखाई जो आज भी बॉलीवुड के हिस्ट्री बुक्स में अमर है। नहीं, फिलहाल अभी आंसर मुझे नूर जी ने भेजा है लिखकर सबसे पहले, जिन्होंने मुझे ये सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अंदर मेरे पूछने के बाद ही जवाब दे दिया। तो चलिए नूर की रिक्वेस्ट पे एक प्यारा सा गाना प्ले करते हैं, क्योंकि किसी की भी रिक्वेस्ट पूरी ना और उसकी आंखों में टीयर्स आए, एंड आई डोंट लाइक टीयर्स। जियो बिंदास।

यार हम लोग कितनी ज्यादा तेजी से किसी के गुलाम बन जाते हैं ना, मतलब सुबह उठते ही फोन उठाते हैं और स्क्रॉल करना चालू, और बस ये रात तक सिलसिला चलता ही रहता है। जब फोन लिया, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग। पहले जब तक ये रील्स का जमाना नहीं था ना, तब तक सब सही था, सॉर्टेड था। नहीं, हार्डली या व्हाट्सएप फेसबुक थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते थे, लेकिन अब तो पता नहीं दिन भर स्क्रॉलिंग का बस बहाना है। हर दिन एक नई रील, एक नया ट्रेंड, एक नई कहानी, पर दिल वही लूप में, स्क्रॉल लाइक रिपीट। 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, मिड नाइट लाउंज में, डिजिटल डायरी में, स्क्रॉल लाइक रिपीट। देखो, डिजिटल दुनिया ने हमें कनेक्ट जरूर किया है, पर कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्ट से हो गए हैं अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से। एक नोटिफिकेशन मिलती है और लगता है कि बस अब मूड सही हो गया, वहीं एक नोटिफिकेशन आती है आपका पूरा मूड स्पॉइल कर देती है। पर सच में क्या हम खुश हैं?

आप ऑफिस में काम नहीं करते हैं फिर भी आपने कभी सोचा है कि आपको इतनी थकावट क्यों होती है, इतना फिजिकल वर्क नहीं करते? एक्चुअली मेंटली आप इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, चीजों को ओवर थिंक करते हैं और उसके बाद ओवर इमोशनल हो जाते हैं ये ऑनलाइन की दुनिया में, कि बस दिमाग जो है ना वो बहुत टायर्ड हो जाता है। तो आज से फोन को थोड़ा सा कम यूज कीजिए, गानों के साथ अपने इस प्रेजेंट को जिए और इसको ना बिंदास जीना यार। बिंदास जीने के लिए अपनी सारी टेंशन को बोलना है रेडियो ऑलिव ट्यून कर रहा हूँ और अब देख तू जियो बिंदास।

0: आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

अच्छा एक टाइम था, एक वो एरा था जहाँ पे ना मतलब हीरो हीरोइंस के स्टाइल्स, कपड़ों से लेकर उनके हेयर स्टाइल से लेकर सब कुछ कॉपी किया जाता था। लिमिटेड हीरो हीरोइंस हुआ करते तो इजी भी होता था, और उस टाइम पे ना बड़ा क्रेज हुआ करता था लड़कियों का कि हेयर बैंड्स कलरफुल हो, वैसी यू नो ड्रेसअप हो, और लड़कों का वही शर्ट पैंट वैसी सी हो जैसे उस हीरो ने, और हेयर स्टाइल भी वैसा हो या मूछे वैसी वाली हो। नहीं, 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, मिड नाइट लाउंज में, और हम सुनने जा रहे हैं जी द ही मैन विद अ सॉफ्ट हार्ट, धर्मेंद्र पाजी की कहानी। कहते हैं कि बॉलीवुड के असली हीरोज वो होते हैं जो सिर्फ स्क्रीन पे नहीं जिंदगी में भी हीरो होते हैं। जिंदगी में वही हीरो कैसे नहीं होंगे जो मुस्कुराते रहते हैं। और आज की कहानी द लेजेंड धर्मेंद्र पाजी जी, पंजाब के एक छोटे से गांव से निकलकर सपनों के शहर अपने मुंबई पहुंच गए। पॉकेट में सिर्फ जज्बा था और दिल में कई ख्वाहिशें, और एक ख्वाहिश जो जिद पकड़ ली थी कि एक्टर तो बनूंगा मैं। ऑडिशन पे ऑडिशन दिए, स्ट्रगल पे स्ट्रगल किया, पर जब कैमरा चला तो दुनिया देखती रह गई। एक हैंडसम हीरो जिसका स्टाइल भी, और मतलब कहते ना जुबा भी, एक अलग ही जबरदस्त थी जो हर दिल पर छाप दे रही थी। हर जुबा पे एक ही डायलॉग था, पुष्पा आई हेट टीयर्स। शोले के वीरू हो या फूल और पत्थर का इंटेंस लवर, धर्मेंद्र पाजी ने हर रोल में अपनी जान डाल दी, अपने दिल लगा दिया, अपनी पूरी मेहनत लगा दी। एज यूजुअल सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहे हैं हमेशा से अपने काम को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे हैं स्क्रीन पर हमेशा से, और इसलिए लोग उन्हें कहते हैं द ही मैन विद द गोल्डन हार्ट। उनकी कहानी सिर्फ स्टारडॉम की नहीं, एक इंसान की है। वो एक ऐसा इंसान जिसने खुद से खुद को बनाया, जो हर मुसीबत में भी ना हंसना जानता है और हर हार्ट ब्रेक में भी दिल से जीना। तो भाई धर्मेंद्र पाजी की इस कहानी ने ये तो सिखा दिया कि हीरो तो बनना फिर भी पॉसिबल है, कितना भी हार्डवर्क कर लो, पर दिल से जीना सबसे बड़ा हीरोइज्म होता है। तो अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा हीरो या हीरोइन बनना है लाइफ का, है ना? तो दिल से जिया करो, कम में भी खुश रहो, मस्त रहो, क्योंकि लोगों को आपके दुखी होने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, मुस्कुराहट से तो फर्क पड़ता है ना, तो मुस्कुराह मैं देता हूँ। कैसे? बढ़िया सा गाना चला के साथ में कहो जियो बिंदास।

अच्छा कभी कभार ना लाइफ बिल्कुल मेस्ड अप हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करना है, बस अब सब कुछ खराब हो चुका है और वहीं से डिप्रेशन स्टार्ट होता है, एंग्जाइटी स्टार्ट होती है। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ बिगड़ जाता है, प्लान्स, लोग और खुद पर से विश्वास भी। पर सच तो ये है हर एंडिंग में ना एक नया बिगनिंग छुपा होता है। 106.3 रेडियो ऑलिफ से आपके दिल की आवाज, मैं हूँ आरजे आकाश, मिड नाइट लॉन्च में, और बारी है जानने की बिफोर यू स्लीप द आर्ट ऑफ स्टार्टिंग ओवर। जी हाँ, रीस्टार्ट बटन चाहे लाइफ में ना हो पर सनराइज हर दिन मिलता है, एक मौका फिर से खुद को जीने का, बेहतर बनाने का। तो आज रात सोने से पहले एक बात याद रखना, गलतियां खत्म नहीं करी जाती और कभी होंगी भी नहीं, वो बस चैप्टर बदल दिया जाता है और तुम्हारा अगला चैप्टर शायद अब तक का सबसे खूबसूरत चैप्टर हो, है ना। तो इसलिए कल फिर एक नई शुरुआत होने वाली है, जो आज हुआ उसको भूल जाओ, जो अब तक हुआ उसको भूल जाओ, लेकर जितना चलोगे वो बोझ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ मिस्टेक्स भी होंगे, कुछ अच्छी चीजें। अच्छी चीजों का बोझ नहीं होता, वो अच्छी चीजें आपको यू नो स्माइल देती है, खुशियां देती है। लेकिन जब आप एक बुरी चीज को लेसन की जगह एक बोझ की तरह लेकर चलना स्टार्ट करोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ज्यादा वेट संभाला जाता है क्या? नहीं ना। तो बस सिंपल जियो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, बाकी एक्ट लाइक अ चैंपियन। आ रहा हूं वापस, कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑल इन, जियो बिंदास।

अच्छा बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास कहने को कतरा भी नहीं है, और अगर देने पर आए तो आप समुंदर भर कर दे सकते हैं? क्या कहेंगे? प्यार, वक्त, इज्जत, क्या चीज? 106.3 रेडियो ऑलिव से आपके दिल की आवाज, मैं हूं आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज में। फिलहाल भाई वक्त दिया, लेकिन ये प्यार है ना, ये प्यार का समंदर है मेरे पास, और ये प्यार का समंदर जो है ना, ये मैं समंदर में डुबो देने वाला हूँ आपको। इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, रेडियो ऑलिव के पेज पर इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश। और देखना यार, तुम कभी भी अकेला फील करो ना, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, तुम भीड़ में मत याद करना, लेकिन जब भी अकेला फील करो ना, कभी भी ऐसा डाउन फील करो, बस हाय आरजे आकाश इनबॉक्स में लिखना, फिर देखना अपने दिल की बात शेयर करना, मैं जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन दूंगा, या फिर एटलीस्ट मैं सुनूंगा, है ना, सामने से रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जाते जाते बढ़िया से ट्रैक्स लगा के जा रहा हूँ अपनी लाइब्रेरी से, ताकि आपका जो सफर है, चाहे जिंदगी का हो या गाड़ी का, इसी तरह से खूबसूरत और बेशुमार प्यारा सा रहे। और अपनी सारी टेंशनों को कह दो, बता रहा हूँ मैं, जियो बिंदास। गुड नाइट।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: ये है मिडनाइट लव,
2: ये है

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: रेडियो ऑलिव 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू योर फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: चांदनी रातें, चांदनी

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3.

0: listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।